मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज़, 684 किलोहर्ट्ज़ FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी करगिल है। सामिन, चंद ही लम्हे बाद अब हम आकाशवाणी दिल्ली से नेशनल न्यूज़ सर्विस के प्रोग्राम रिले करेंगे। रिले का थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए।

कम सुहाना सफर में आप सुन रहे थे आशा भोसले के साथ मोहम्मद रफी की आवाज थी ये गीत। दोस्तों हम में से बहुत से लोग समुद्र से दूर रहते हैं, लेकिन सच ये है कि महासागर हमसे कभी दूर नहीं होते। हमारे आसपास जो हवा बहती है, जो वर्षा हमें मिलती है और पृथ्वी पर जो जीवन संभव है, उसमें महासागरों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत ना वर्ष 1992 में रियेडो जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के दौरान हुई थी और साल 2008 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे आधिकारिक मान्यता दी थी। यानी आज है 8 जून और आज है विश्व महासागर दिवस। इस वर्ष ना विश्व महासागर दिवस की जो थीम है वो है वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस, यानी उसका संरक्षण करें जो हमें जीवन देता है। पृथ्वी की लगभग 71% सतह महासागरों से ढकी हुई है। ये जलवायु को संतुलित रखते हैं, वर्षा चक्र को प्रभावित करते हैं और पृथ्वी पर उपलब्ध जो हमारी ऑक्सीजन है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा समुद्री वनस्पतियों के माध्यम से हमें मिलता है। दोस्तों आज महासागर प्लास्टिक प्रदूषण, बढ़ते तापमान और जैव विविधता के संकट जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में ये जो दिन है ना, ये हमें याद दिलाता है कि महासागर केवल जल का विशाल भंडार नहीं बल्कि जीवन का आधार है। आइए इस दिन इस अवसर पर हम प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें और आने वाली पीढ़ियों के लिए महासागरों को सुरक्षित रखने का संकल्प लें।

फिल्म बारूद में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में ये बहुत प्यारा सा गीत। और देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं किसकी, जी हाँ, घर आंगन की, क्योंकि कार्यक्रम है घर आंगन 14.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम गोल्ड पर। जीवन में ना कभी कभी कुछ भूमिकाएं हमारी प्राथमिकता बन जाती हैं। परिवार, बच्चों की देखभाल या अन्य जिम्मेदारियों के कारण कई महिलाएं अपने करियर से कुछ समय के लिए दूरी बना लेती हैं, है ना। और फिर क्या होता है कि इसके बाद में वापसी में कुछ परेशानियां आने लग जाती हैं। लेकिन करियर में दोबारा वापसी करने का पहला कदम क्या है, वो है अपने अनुभव और अपनी क्षमताओं पर विश्वास बनाए रखना। भले ही कार्यस्थल दूरी रही हो, भले ही आपकी अपनी कार्यस्थल से दूरी रही हो, लेकिन इस दौरान ना जो आपके अंदर एक धैर्य, एक टाइम मैनेजमेंट और एक समस्या का समाधान, कुछ ऐसे कौशल हैं जो आपने इस दौरान अगर अपने अंदर विकसित किए हैं तो वो आपके लिए बहुत कारगरी साबित हो सकते हैं। वापसी की तैयारी के लिए ना आपको अपने क्षेत्र की नई जानकारियों और तकनीकों से स्वयं को अपडेट रखना उपयोगी हो सकता है। देखिए आजकल ना ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हो गए हैं जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। वेबिनार और डिजिटल प्लेटफॉर्म सीखने के बहुत सारे अवसर हमें उपलब्ध बहुत सहज तरीके से कराते हैं। फिर ऐसे छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करना एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। जैसे आप सबसे पहले क्या करिए, आप पहले पार्ट टाइम कहीं फिर कोई काम ढूंढिए, फिर फ्रीलांसिंग भी कर सकती हैं, घर से काम या फिर अपना खुद का छोटा कोई उद्यम हो सकता है, जहाँ पर कई महिलाओं के लिए ये जो तरीके होते हैं, ये जो ऑप्शंस होते हैं, ये आत्मविश्वास लौटाने का एक बहुत अच्छा जरिया बन सकते हैं। सबसे जरूरी बात वो ये है कि करियर में आया जो ये विराम है ना, ये आपकी क्षमता को कम नहीं करता, लेकिन जीवन के हर अनुभव से व्यक्ति हमेशा समृद्ध होता है, ये आप हमेशा याद रखें। इसीलिए यदि आप दोबारा शुरुआत करना चाहती हैं तो आपको बस कुछ चीजें याद रखनी हैं। जैसे आपने केवल कुछ समय का विराम लिया है, आपने अपनी पहचान खोई नहीं है, आप खुद को फिर से वापस उस फील्ड में, उस जगह पर दोबारा ला सकती हैं जो आपके लिए सबसे अच्छा रहा है, या आपने जिस कार्यक्षेत्र से कुछ समय के लिए दूरी बनाई है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके जरिए आप अगर अपनी क्षमताओं को और दोबारा तौलें और एक नई शुरुआत करें और अपने जीवन को एक नया मोड़ दें।

आरती मुखर्जी को आप सुन रहे थे फिल्म गीत गाता चल में। दोस्तों आज की ना जो माँ है, जी हाँ, उसके सामने ना बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। वह घर भी संभालती है, बच्चों का ध्यान भी रखती है और कई बार अपने कामकाजी जीवन की जिम्मेदारियां भी निभाती है, मानेंगे ना। और अगर ऐसे में अक्सर ना वो खुद को या अपने आप से ये अपेक्षा करने लगती है कि उसे हर भूमिका में सर्वश्रेष्ठ होना है, लेकिन क्या सचमुच बच्चों को ऐसी सर्वश्रेष्ठ या सुपर मॉम की जरूरत है? ना ना, बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत क्या होती है पता है आपको? एक ऐसे घर की जहाँ अपनापन हो, संवाद हो और मुस्कुराहटें हो। इसके लिए माँ का हर समय परिपूर्ण होना जरूरी नहीं, बल्कि उसका खुश और संतुलित रहना सबसे अधिक जरूरी है। जब माँ खुद के स्वास्थ्य, अपनी रुचियों और अपने आराम का ध्यान रखती है ना, तो उसका जो सकारात्मक प्रभाव है ना, वो पूरे परिवार पर पड़ता है। जो माँ खुद खुश रहेगी, वही बच्चों को जीवन में संतुलन और आत्मविश्वास का महत्व भी सिखा पाएगी और अपने बच्चों को खुश रहना भी सिखा पाएगी। इसीलिए खुद पर ना मतलब जिसे कहते हैं कि अनावश्यक दबाव डालने की बजाय ये स्वीकार करना जरूरी है कि पूर्णता नहीं, प्रेम ज्यादा जरूरी है। हर समय सुपर मॉम बनने की कोशिश ना करें, इससे बेहतर है कि एक ऐसी हैप्पी मॉम बने जो स्वयं का भी उतना ही ख्याल रखे जितना अपने परिवार और बच्चों का रखती है। आखिरकार बच्चों को वो माँ सबसे ज्यादा याद रहती है जिनके साथ हंसी थी, उनके साथ बैठी थी और उनकी बातें जो हमेशा सुनती है ना, मतलब एक हंसती खेलती साथ देती माँ ही बच्चों को हमेशा अपनी याद रहती है। और मैं हम लोग भी यही चाहते हैं कि एक ऐसी ही माँ हमारे बच्चों की नज़र में हमेशा बनी रहे, क्योंकि केवल वह नहीं जिनके लिए हमने हमेशा पूरा काम किया है, बल्कि हम वो हैं जिन्होंने खुद खुश रहकर अपने बच्चों को खुश रहना सिखाया है, क्योंकि खुश माँ ही खुश परिवार की सबसे मजबूत नींव होती है, मानेंगे ना।

घर में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। दोस्तों हमारे साथ हमारे एक और दोस्त जुड़े हैं, ये हैं उग्रसेन यादव, नई दिल्ली से लिख रहे हैं, आपको मेरा दिल से नमस्कार। आकाशवाणी को 90 वर्ष पूरे होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को ये अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां दे रहे हैं, नमन कर रहे हैं, और आपकी इन्हीं सारी बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और देखिए चलते चलते आपसे बस यही बात कहूंगी कि हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी तब आएगी जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सच ये है कि खुशी वहीं से शुरू होती है जहां हम रुककर यह देखना सीखते हैं कि जो हमारे पास है वो कितना काफी है, है ना। जिंदगी में हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है, एक शांत सा पल, एक गहरी सांस, किसी अपने की सच्ची मुस्कान, इन सारी बातों को, इन सारे खजानों को अपने जीवन में संजोए रखिए। हमारे साथ बने रहिए हमारे कार्यक्रम घर आंगन में, और हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। इसी के साथ मुझे यानी आपके रेडियो हम सफर सोनाली को दीजिए अनुमति, नमस्कार। घर आंगन आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा, आपका घर आंगन।

0: गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। उन्होंने कहा कि इन 12 वर्षों ने निर्धनों और वंचितों के जीवन में आशा, अवसर और स्वावलंबन के नए अध्याय लिखे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
1: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से ईरान के मिसाइल हमले पर जवाबी कार्रवाई न करने का आग्रह किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि इससे शांति समझौते तक पहुंचने के प्रयासों में बाधा आ सकती है। उन्होंने ईरान से फिर वार्ता शुरू करने का आग्रह किया है। भारतीय शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक निफ्टी और सेंसेक्स में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.6% की गिरावट आई। सेंसेक्स 434 अंक गिरकर 73,809 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वर्षा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi today highlighted the government.

0: created to prevent malicious traffic and cyber threats. It reminded that only those candidates who had applied for their scanned answer books during the preceding stage were eligible to avail the subsequent stage. Akashvani is celebrating the completion of its 90 years today. On this day in 1936, the Indian State Broadcasting Service was renamed All India Radio. Post-independence, All India Radio expanded rapidly, adopting the name Akashvani in 1956. Today, Akashvani operates through 591 stations across the country. Israel and Iran have traded fresh missile attacks on each other, triggering escalation in West Asia and jeopardizing the ceasefire. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, launched a fresh wave of strikes on key Israeli military installations. The IRGC Aerospace Force said the operation, named Operation Nasr, targeted core sectors of two of Israel's most important air bases, Nevatim and Tel Nof. According to media reports, the operation was carried out in direct retaliation for recent Israeli missile strikes that hit Iranian radar sites at three separate locations across the country. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.6% lower during afternoon trade today. The Sensex fell 434 points to 73,809, while the Nifty dropped 145 points to 23,222 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर. इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1:10 हुए हैं. वक्त है कार्यक्रम एक ही फिल्म से का. तो कार्यक्रम एक ही फिल्म से लेकर हाजिर हूँ आपके समक्ष मैं, आपकी होस्ट और दोस्त रिया प्रकाश. कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है. तो आज जिस फिल्म के बारे में हम बात करेंगे, उस फिल्म का नाम है नील कमल. जी हाँ, नील कमल 1968 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है जो राम महेश्वरी द्वारा निर्देशित है. इस फिल्म के मुख्य कलाकार वहीदा रहमान सीता और राजकुमारी नील कमल की दोहरी भूमिका में है. राजकुमार चित्रसेन यानी मूर्तिकार की भूमिका में है. मनोज कुमार राम यानी सीता के पति के किरदार में है. इसके अलावा फिल्म में महमूद, ललिता पवार, शशिकला और बलराज भी शामिल हैं.

श्रुता 1968 में रिलीज हुई फिल्म नीलकमल बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता साबित हुई और 1968 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 16वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में नीलकमल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, राम महेश्वरी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता राजकुमार को, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शशिकला और सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता महमूद सहित 8 नामांकन प्राप्त हुए। और वहीं वहीदा रहमान को फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला, जो 1965 में रिलीज हुई फिल्म गाइड के बाद इस श्रेणी में उनकी दूसरी जीत थी।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, नीलकमल फिल्म का संगीत रविशंकर शर्मा द्वारा रचित था और इसके गीत साहिर लुधियानवी द्वारा लिखे गए थे। इस फिल्म का गीत बाबुल

की दुआएं लेती जा, जिसे हम ऑलमोस्ट हर शादियों में सुनते हैं, हमें हर बार भावुक कर देता है। इस गीत के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार के लिए मोहम्मद रफी को नामांकन प्राप्त हुआ था। इस फिल्म के अन्य गीतों की बात करें तो वो भी एक से बढ़कर एक साबित हुई।

श्रोताओं, अगर बात करें फिल्म नीलकमल की कहानी की, तो आपको बता दें कि फिल्म की कहानी पुनर्जन्म और रहस्य पर आधारित है। एक आधुनिक कॉलेज की लड़की सीता यानी वहीदा रहमान नींद में चलने यानी स्लीप वॉकिंग की अजीब बीमारी से ग्रस्त है। नींद में अक्सर वो एक पुराने किले के खंडरों में पहुंच जाती हैं, जहां उसके पिछले जन्म की यादें और अधूरी प्रेम कहानी छिपी हुई है। पिछले जन्म में वो एक राजकुमारी नीलकमल थी और चित्रसेन नामक

प्रकार से प्रेम कर बैठी थी। राजा द्वारा चित्रसेन को दीवार में जिंदा चुनवा दिए जाने के कारण उन दोनों का प्रेम अधूरा रह जाता है। वर्तमान जीवन में राम नाम का एक व्यक्ति सीता को बचाता है और बाद में दोनों का विवाह हो जाता है, जिसके बाद सीता के पिछले जन्म का रहस्य खुलता है।

श्रोताओं, फिल्म नीलकमल की निरंतर लोकप्रियता का कारण अलौकिक तत्वों, जटिल रिश्तों और मनमोहक अभिनय का अनूठा मिश्रण है। फिल्म पुनर्जन्म, अमर प्रेम और मानवीय रिश्तों की जटिलताओं जैसे विषयों को कुशलतापूर्वक एक साथ पिरोती है, जिससे एक ऐसी सम्मोहक कहानी का निर्माण होता है जो दर्शकों के दिलों को छू जाती है।

चित्रसेन के राजकुमारी नीलकमल के प्रति अमर प्रेम पर केंद्रित अलौकिक कहानी में एक रहस्यमयी रंग भर देता है, जिससे यह अपने समय की अन्य रोमांटिक फिल्मों से अलग पहचान बनाती है। वहीदा रहमान द्वारा सीता के किरदार में निभाई गई भावनात्मक गहराई, राजकुमार द्वारा चित्रसेन के रूप में किया गया दमदार अभिनय और सहायक कलाकारों विशेष रूप से शशिकला और महमूद के शानदार प्रदर्शन ने फिल्म की अपील को और भी ज्यादा बढ़ा दिया।

साथ ही संपन्न होता है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आशा करती हूँ इस फिल्म से जुड़ी जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी। अब अपनी होस्ट और दोस्त रिया प्रकाश को दीजिए अनुमति।

0: सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को हैं। कुछ ही देर में अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे नाल मैं यादविंदर सिंह। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबां दे हित विच सरकार दी 12 साला दी विकास यात्रा उत्ते चानना पाया। उन्हां कहा गरीबां ते वांझे वर्गां दी भलाई देश विच हो रही तब्दीलियां दे केंद्र च। लोक सभा स्पीकर ओम बिरला चंडीगढ़ विच राष्ट्रमंडल संसदी संघ इंडिया रीजन जोन 2 कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय प्रीख्या एजेंसी ने 21 जून नूं होण वाली नीट यूजी मुड़ प्रीख्या लई शहरां दी जानकारी जनतक कर दित्ती है। देश दा भरोसेमंद लोक प्रसारक आकाशवाणी अज अपने 90 साल पूरे होण दा जश्न मना रहा है। ते भारत पलके तो इंदौर च ब्रिक्स खेतीबाड़ी कार्य समूह ते ब्रिक्स खेतीबाड़ी मंत्रियां दी मुख मीटिंगां दी मेजबानी करेगा। हुण खबरां विस्थार दे नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबां दे हित विच सरकार दी 12 सालां दी विकास यात्रा उत्ते चानना पाया है। श्री मोदी ने अज एक सोशल मीडिया पोस्ट विच कहा कि इस समय दौरान देश ने बहुत सारियां तब्दीलियां देखियां अते गरीबां ते वांझे वर्गां दी भलाई इन्हां तब्दीलियां दे केंद्र च रही है। उन्हां कहा कि अंतोदय हमेशा सरकार लई प्रेरणा स्रोत रहा है अते यकीनी बनाउण दी कोशिश रही है कि विकास दे लाभ दहाकियां तों पिछे रह चुके लोकां तक पहुंच सकन। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, सीधा लाभ तबादला, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन अते आयुष्मान भारत वर्गी हर पहलकदमी का उद्देश लोगों लिए माण अते मौके नूं यकीनी बनाउणा है। तकनालोजी ने गरीबां दे जीवन पद्धर नूं सुधारन च अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीधे लाभ तबादले अते डिजिटल साधना राहीं सहायता लोकां तक सीधे अते पारदर्शी ढंग नाल पहुंच रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्तिगत शक्तिकरण अते विकसित भारत दे सुपने नूं साकार करन लई जन अंदोलन बन गई है। केंद्रीय पेंडू विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण दे 12 सालां दा समां पूरे देश विच करोड़ां वांझे परिवारां दे जीवन च मान सन्मान, सुरक्षा अते आत्म निर्भरता लियाउण वाला नवां अध्याय साबित होया है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत अते प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना वर्गियां पहलकदमियां ने मुश्किल हालात विच करोड़ां परिवारां नूं मजबूत कीता है। हरियाणा विधानसभा वालों करवाई जा रही भारतीय खेतर दे उत्तरी जोन 2 लई राष्ट्रमंडल संसदी संघ CPA कॉन्फ्रेंस दी चंडीगढ़ च शुरुआत की जाएगी। यह कॉन्फ्रेंस बुधवार तक जारी रहेगी। हरियाणा विधानसभा दे स्पीकर हरविंदर करयान ने कहा है कि लोक सभा स्पीकर ओम बिरला कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। राज सभा के उप सभापति हरिवंश, सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और 15 राज विधानसभा के प्रिजाइडिंग अफसर से विधायक इस समागम च शामिल रहेंगे। 3 दिन कॉन्फ्रेंस दौरान राष्ट्र निर्माण में विधानसभावां की भूमिका, विकसित भारत 2047, आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस, लोक राज्य संस्थावां नूं वधेरे

0: समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह न्यू मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस न्यू मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
1: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि पूरे देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी पहल ने कठिन परिस्थितियों में करोड़ों परिवारों को ताकत दी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। एक रिपोर्ट।
2: आयुष्मान भारत योजना देश के सभी नागरिकों को समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल इस योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। योजना के तहत देशभर में 36,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है और अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना की शुरुआत के बाद से यह भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव का आधार बनी है। इससे लोगों के इलाज पर होने वाला निजी खर्च कम हुआ है और वे सरकारी तथा निजी अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
3: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।

0: उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और मधु जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और सीबीएसई से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। जनहित याचिका में सीबीएसई द्वारा अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता जहांगीर खान को आज सुबह नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया। वो कथित रूप से नेपाल सीमा से भागने के प्रयास में था। आगे की पूछताछ के लिए उसे कोलकाता लाया जा रहा है। पिछले महीने की 21 तारीख को फलता विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के सिलसिले में ये गिरफ्तारी हुई है। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करेगा। ये बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में कल से 13 जून तक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये बैठक इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
2: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश के 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।
4: आदा, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9।
2: अमन यादव के साथ तकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरव

0: डाले 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
1: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूँ। 90 साल आपने पूरा किया है, 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए हैं। इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने इसराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान और इसराइल के बीच हाल ही सैन्य गतिविधियों ने अप्रैल से लागू संघर्ष विराम को चुनौती दी है। हाल के मिसाइल और सैन्य हमलों से क्षेत्रीय शांति भंग हुई है। ईरान ने कहा कि उसकी कार्रवाई लेबनान में इसराइली सैन्य अभियानों के जवाब में की गई एक सीमित और संतुलित प्रतिक्रिया थी। वहीं इसराइल का दावा है कि उसकी सैन्य कार्रवाइयों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और भविष्य के संभावित हमलों को रोकना है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत की प्रक्रिया में लौटने की अपील की है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ बातचीत की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान दूसरी पारी में चायकाल तक 5 विकेट पर 98 रन बनाकर खेल रहा है। भारत द्वारा फॉलो ऑन कराए जाने के बाद अफगानिस्तान 314 रन से पीछे है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Dr. Sopayantes, National News Service, Kana, Program, Media, Mikanga, Chess, Akashwani, Kerigilikana, Zirinut, Waksputu Sot, Nis, Naminut, Sumchu, Sonsuk, Kaseta, Sponsored Program, Chicken, Mazet,

0: जिंदगी चाहे कितनी भी खूबसूरत हो अपनों के बिना अधूरी लगती है।
1: बहुत सुंदर संदेश आपका, इसके लिए हमारा आभार स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से, कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखते हैं,
0: ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 4 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। इस बात की जानकारी को बहुत ही सरल और सहज ढंग से बताया गया। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों पर अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
1: कृष्ण कुमार गुप्ता जी आगे लिखते हैं, करगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बखान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी हासिल हुई। इस अप्रतिम प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
0: धन्यवाद कृष्ण कुमार जी, आपकी प्रतिक्रियाओं से हमारा उत्साह बढ़ता है।
1: साथ ही साथ हम अन्य सभी श्रोताओं से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें, सिर्फ सुविचार भेजकर ही संतुष्ट न हो जाएं।
0: जी, और अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
1: लिखते हैं, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। सोमवार से शुक्रवार तक हम रोज सुनते हैं, हमारे साथ हमारे बच्चे भी सुनते हैं
0: जी।
1: एक सुझाव है कि यदि सब्जी, फूल, फल व मोटे अनाज पर भी जानकारी सुनवाई जाए तो हम सबों को बड़ा लाभ होगा।
0: दिनांक 12 मई को भीषण गर्मी के उपाय, बचाव, नवतपा, थर्मल लैग जैसी बेहद उम्दा जानकारी हमने सुनी, परिवार के सभी को बेहद पसंद आई। अब उमंग कार्यक्रम में 17 सदस्य और जुड़ गए हैं। दिन पे दिन संख्या बढ़ रही है, कार्यक्रम की उपयोगिता सबको जोड़ती जा रही है। ये ज्ञान का भंडार है, इसलिए हम हृदय से उमंग टीम को आभार, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल, अंजलि जंघेल, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का।
0: गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर से कानाराम चौहान जी का।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का नाम क्या था?
0: इसका उत्तर है साथियों, 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था। इसे बर्लिन वॉल कहा जाता है।
1: जी, हमारा दूसरा प्रश्न था, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी।
1: और अब सुनिए हमारे द्वारा पूछा गया तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर। हमारा प्रश्न था, गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकते हैं?
0: गोबी के शीत मरुस्थल में बनाए जाने वाले मोबाइल घरों को यर्ट कहते हैं।
1: जी, और अब हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं।
0: इसका उत्तर है साथियों, लद्दाख क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में पाए जाने वाले पेड़ को विलोवुड ट्री कहते हैं जिनसे क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं।
1: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के किस गांव में पड़ता है?
0: इसका उत्तर है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के स्पीति घाटी के हिक्किम गांव में पड़ता है।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। उन सभी श्रोताओं को हमारा शुक्रिया जिन्होंने भाग लिया और उत्तर भेजे। अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है,
0: भारत की किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? श्रोताओं, आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आईडी यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भी।
0: प्रश्न एक बार मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप कृपया CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए।
1: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
0: एक चिर परिचित लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि यदि कोई प्रशंसा करे तो हमें तुरंत प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमें तथ्यों की जाँच करनी चाहिए कि कहीं प्रशंसा किसी स्वार्थ के कारण तो नहीं की जा रही है।
1: जी,
2: प्यारे

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो आइए श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे और नयन पांडे जी ने। लिखते हैं

बच्चों नमस्ते। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक कहानी। कहानी का नाम है चालाक लोमड़ी। इस कहानी में लोमड़ी एक कौवे से रोटी का टुकड़ा छीन लेती है। कैसे छीनती है? बात यूं है कि एक बार एक कौवे को रोटी का टुकड़ा मिला। रोटी का टुकड़ा उसने अपनी चोंच में दबा लिया। एक लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा जब कौवे के मुंह में देखा तो सोचा, यदि ये रोटी मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। जानते हो फिर लोमड़ी ने क्या किया? नहीं भाई, आगे क्या हुआ ये तो मैं नहीं बताऊंगी। तो सुनो ये पूरी कहानी इस गीत में।

0: कौवे को यूं बुद्धू बनाया, रोटी खोकर कौवा बड़ा ही पछताया।
1: बेचारा कौवा अपनी रोटी गंवा बैठा ना, क्यों भला? क्योंकि उसने लोमड़ी से जब अपनी झूठी प्रशंसा सुनी तो वो घमंड में आकर गाने लगा और रोटी मुंह से गिर गई।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
3: जनजातीय समुदाय की प्रगति, आकांक्षा और विकसित भारत की यात्रा के जनजातीय गरिमा उत्सव में आइए, हम सब साथ जुड़ें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर जनजातीय समुदाय आशा, सम्मान और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 10 मई से 9 जून तक हर पीढ़ी की प्रगति को प्रदर्शित करता ये आयोजन एक सशक्त, समावेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर अग्रसर है।
4: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम,
2: राजा रवि वर्मा।
4: ये कार्यक्रम भारत के महान चित्रकार राजा रवि वर्मा की जीवनी को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करता है और बताता है कि किस तरह से उन्होंने कैनवस पर अपने पेंट ब्रश से भारतीय चित्रकला को एक नया आयाम दिया, जिसका शाश्वत प्रभाव आज भी उसी प्रकार से बना हुआ है।

0: तुम लोगों ने ये क्या किया? कोचू मंगला, तुमने तो मंदिर की दीवार ही गंदी कर दी। कोयले से ये क्या चील बिलाऊ बना दिए? अभी तो मंदिर सफेदी से पुतवाया था, तुमने उसे भी गंदा कर दिया। ठहरो ठहरो, मैं अभी राजा साहब से तुम्हारी शिकायत करता हूँ।
1: लगभग 150 साल पुरानी बात है। उस समय देश पर अंग्रेजों का राज्य था और छोटी बड़ी ढेर सारी रियासतें थीं जिनके राजा हुआ करते थे। ऐसी ही एक रियासत थी त्रावणकोर और उसकी राजधानी थी त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम को अब तिरुवनंतपुरम कहा जाता है और अब ये केरल राज्य की राजधानी है। उस समय त्रिवेंद्रम के राजा थे आयिल्यम तिरुनाल। उनकी ही रियासत में एक गांव था किलिमानूर, जहां का प्रबंध राजवर्मा देखते थे और उन्हें भी राजा कहा जाता था।
2: उनका एक हरे भरे बाग में मंदिर था। मंदिर को अभी हाल ही में सफेदी से पुतवाया गया था। राजा राजवर्मा की बहन थी उमा अंबाबाई। उनके बड़े बेटे थे कोच्चू। कोच्चू उनका घर का नाम था। वैसे उनका नाम रवि वर्मा था। रवि वर्मा की बहन थी मंगला। दोनों एक दिन बगीचे में खेल रहे थे। खेल खेल में कोच्चू ने कहा,
3: मंगला
4: हाँ?
3: आह देख, मैं तुझे इस सफेद दीवार पर घोड़ा बनाकर दिखाता हूँ।
4: ठीक है।
3: अच्छा देख, वो कोयले का टुकड़ा पड़ा है ना?
4: हाँ हाँ।
3: उठाकर मुझे दे।
4: अच्छा, ये लो कोयले का टुकड़ा।
3: हाँ।
4: अब बनाकर दिखाओ घोड़ा।
1: कोच्चू ने कोयले से लकीरें खींचनी शुरू की और देखते ही देखते घोड़े का चित्र बना दिया।

0: ऐसे ये मैंने बना दी घोड़े की टांग।
1: अरे वाह।
0: और ये इसकी पूंछ।
1: अरे तुमने तो बिल्कुल सही घोड़े का चित्र बना दिया। पूंछ उठाकर भागते हुए घोड़े का चित्र बहुत सुंदर है।
0: अच्छा ले कोयला ले, और अब तू भी बना सुंदर सा चित्र।
1: लेकिन मुझे तो ले, अरे मगर
0: ओ, ओ, अब बना तो सही। ले पकड़ कोयला पकड़।
1: ठीक है
0: अब बना।
2: मंगला चित्र बनाने जा ही रही थी कि उधर से गुजरते हुए माली की निगाह उन पर पड़ गई। माली ने डांटा, तुमने दीवार खराब कर दी, और फिर राजा साहब से शिकायत करने चला गया। इस पर मंगला बोली,
1: भाई अब क्या होगा, माली गया है शिकायत करने, मामा देखेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे।
0: तू चिंता मत कर। अच्छा चल हम दोनों झाड़ियों में छिप जाते हैं।
1: ठीक है
0: चल चल चल चल, चल। हम दोनों झाड़ियों में छिप जाते हैं।
1: हाँ, ठीक है, चल, चल, चल,
3: कोच्चू और मंगला झाड़ियों के पीछे छिप गए, और तभी माली राजा साहब को लिए हुए वहां पहुंचा।
4: अरे ये तो घोड़े का हूबहू चित्र बना दिया है कोच्चू ने, देखो तो सही, पूंछ उठाए घोड़ा कैसा भाग रहा है।
2: माली परेशान, राजा तो चित्र की तारीफ कर रहे हैं, मंदिर की दीवार खराब कर दी, इस बारे में कुछ कह ही नहीं रहे।
5: कहाँ है कोच्चू और मंगला है?
6: मालिक मैं अभी तो उन्हें छोड़कर गया था, आप उन पर नाराज होंगे ये सोचकर कहीं इधर उधर भाग गए होंगे।

राजा साहब ने पहचान लिया कि कोच्चू में चित्रकार बनने की क्षमता है। राजा साहब स्वयं एक अच्छे चित्रकार थे, विद्या प्रेमी थे। उन्होंने कोच्चू को प्रोत्साहित किया, उसे चित्र बनाना सिखाने लगे। लेकिन कोच्चू के पिता नीलकांतन भट्टा तिरपड़ को यह पसंद नहीं था कि उनका बड़ा बेटा कोच्चू बड़ा होकर एक चित्रकार बने। नीलकांतन वेदों के ज्ञाता, संस्कृत के विद्वान थे। वो चाहते थे कि कोच्चू उनकी तरह संस्कृत का विद्वान बने। केरल की अपनी एक प्रथा रही है कि शादी के बाद दुल्हन दूल्हे के घर रहने के लिए नहीं जाती, बल्कि दूल्हा ही दुल्हन के परिवार में रहने के लिए आता है। नीलकांतन भी अंबाबाई के भाई राजा साहब के यहाँ रहते थे। उन्हें राजा साहब की बात माननी पड़ी, लेकिन ये भी तय रहा कि कोच्चू संस्कृत भी सीखेंगे। कोच्चू अपने पिता से संस्कृत भी सीखने लगे, माँ से संगीत और मामा राजा साहब से चित्रकला। इस प्रकार साहित्य, कला और संस्कृति के धार्मिक और कलात्मक परिवेश में उनका पालन पोषण हुआ। तरुणावस्था आते आते वो सभी में सिद्धहस्त होते चले गए। तभी त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया।

0: बहन अम्बा
1: जी,
0: त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया है। उन्होंने कहला भेजा है कि घराने में कोई अच्छा सा विवाह योग्य युवक हो तो उसे भी साथ लेते आए।
1: फिर
0: क्या, राजा का बुलावा आया है तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही। सोचता हूँ कोचू को साथ ले जाऊं। यहाँ वो जो कुछ लिख पढ़ सकता था, जितना कुछ सीख सकता था
1: जी,
0: सीख ही चुका है। आगे सीखने के लिए उसका त्रिवेंद्रम जाना ही ठीक रहेगा।
1: तो फिर
0: तुम कहो तो उसे त्रिवेंद्रम ले जाऊं?
1: ले जाओ, मैं क्या मना करती हूँ। हाँ, उसके पिताजी से भी पूछ लो।

पिता नीलकांतन ने भी स्वीकृति दे दी। भला उन्हें क्या आपत्ति होती। त्रिवेंद्रम जाकर कोच्चू आगे ही बढ़ेगा, वहां के विद्वानों, गुणियों और कलाकारों से उच्च शिक्षा पाएगा।

0: राजा राजवर्मा, हमारा संदेशा पाकर आप आए, अच्छा किया जो आप आए। आपका स्वागत है। आपके यहां सब कुशल क्षेम तो है?
1: जी हाँ, ईश्वर की कृपा से सब ठीक है।
0: आपके साथ ये नवयुवक कौन है?
1: महाराज, ये रवि है, मेरी बहन अंबाबाई और बहनोई, विद्वान नीलकांतन भट्टा तिरुपद का बड़ा बेटा। इसे भी मैं आपके दर्शनों के लिए अपने साथ ले आया हूँ। इसने तमिल और संस्कृत का अध्ययन किया है महाराज। गायन, वादन और कथकली में निपुण है और चित्रकला का अभ्यास करता है।
0: अरे, तब तो ये नवयुवक बहुत अच्छा है, बहुत गुणवान है।
1: महाराज, इसमें आगे बढ़ने की बहुत ललक है, लेकिन हम किलिमानूर में रहकर इसे जितना सिखा सकते थे उतना सिखा दिया है। आगे की शिक्षा तो उसे आपके आश्रय में ही मिल सकती है।
0: इसमें क्या परेशानी है? इसकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था हम यहीं करा देंगे। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े गुणी और ज्ञानी विद्वान हैं। राज चित्रकार रामास्वामी नायकर हैं। हम इसे चित्रकला की शिक्षा रामास्वामी नायकर से दिला देंगे।
1: आप ऐसी व्यवस्था करा दें तो बड़ी कृपा होगी।
0: आप निश्चिंत हो जाएं। समझ लीजिए कि इसकी व्यवस्था हो गई।

0: राजा तिरुनाल ने दरबार में उपस्थित राज चित्रकार रामस्वामी नायकर को संबोधित करते हुए कहा,
1: नायकर जी, आज से ये नवयुवक आपका शिष्य है। इसे आप राजकीय रंगशाला में चित्रकला की उच्च शिक्षा दें। ये हमारे राजा राजवर्मा का भांजा है और होनहार नवयुवक है, और अब ये हमारे संरक्षण में है।
2: रामस्वामी नायकर ने देखा कि नव युवक का हाथ तो उनसे भी कहीं अधिक सधा हुआ है। ऐसे में इसे कुछ सिखाने का मतलब होगा अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। इसलिए उन्होंने उसे कुछ नहीं सिखाया, बल्कि उसे डांटता फटकारता रहा। तिरुनाल को पता चला कि रामस्वामी उसे कुछ नहीं सिखा रहे, तो उन्होंने रवि को रंग दिए, विदेशी चित्रकारों के चित्रों के एल्बम दिए और कहा,
1: रवि
3: जी,
1: तुम इन चित्रों को देख देख कर चित्र बनाना और रंग भरना सीखो, बराबर अभ्यास करो।
3: जी।
0: रवि वर्मा यही करने लगे। तभी दरबार में राज परिवार के लोगों के चित्र बनाने के लिए एक विदेशी चित्रकार आया। नाम था उसका थियोडोर जेंसन। राजा तिरुनाल ने उससे कहा कि वो रवि वर्मा को अपनी कला सिखाए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इस पर राजा तिरुनाल ने कहा,
1: मिस्टर जेंसन,
4: यस,
1: जब आप चित्र बना रहे हो तब इसे अपने पास खड़ा रहने दें।
4: नहीं नहीं, ऐसा करने से मेरा ध्यान भंग होगा। मैं इसे अपने पास भी खड़ा रहने नहीं दे सकता।
1: तो फिर हमें आपसे चित्र नहीं बनवाने हैं, आप जा सकते हैं।
2: राजा तिरुनाल की ये बात सुनकर जेंसन घबरा गया। घबराता क्यों ना, इससे उसे मिलने वाले भरपूर धन और मान सम्मान खोने का डर जो पैदा हो गया। वो सोचने लगा,
4: राजा साहब की बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी। अगर नहीं मानता तो मेरी इज्जत और मान खत्म हो जाने का डर है। अच्छा, सिखाऊंगा उसे चित्र बनाना। ऐसा सिखाऊंगा कि उसे कभी कुछ समझ नहीं आएगा। पर मैं राजा साहब को ना क्यों करूं?
2: इस तरह हार कर उसने राजा तिरुनाल की बात मान ली।

0: लेकिन उसने भी यही कोशिश की कि रवि वर्मा उसे काम करता देखकर भी कुछ न सीख सके। लेकिन रवि वर्मा तो उसके कुछ ना सिखाते हुए भी बहुत कुछ सीख गए। वो बराबर चित्र बनाते रहे। उन्हीं दिनों मद्रास में आयोजित चित्र प्रदर्शनी में उन्होंने अपना एक चित्र भेजा। इस चित्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया और उन्हें मद्रास के गवर्नर की ओर से स्वर्ण पदक पुरस्कार में दिया गया। इस स्वर्ण पदक से शुरू हुआ उन्हें सम्मान और पुरस्कारों के मिलने का सिलसिला, जो बराबर जारी रहा। उन्हें देश और विदेश के अनेक सम्मान मिले। अंग्रेजों ने उन्हें हिंद केसरी सम्मान और राजा की उपाधि दी। उन्होंने अनेक राजा महाराजाओं और बड़े बड़े लोगों के व्यक्ति चित्र बनाए, जो अंग्रेज चित्रकारों द्वारा बनाए चित्रों से कहीं अधिक उत्तम थे। उन्हें अनेक राजा महाराजाओं ने आमंत्रित किया और अपने महलों में लगाने के लिए चित्र बनवाए। इन चित्रों के बदले में उन्होंने रवि वर्मा को खूब धन मान सम्मान दिया। यहां तक कि मैसूर के महाराज ने तो उन्हें इनाम में दो हाथी तक दिए।
1: राजा रवि वर्मा ने केवल राजा महाराजाओं के चित्र ही नहीं बनाए, बल्कि आम लोगों के चित्र भी बनाए और सबसे अधिक चित्र बनाए देवी देवताओं के, भागवत और पुराणों के। कवि कालिदास की कृति शाकुंतलम पर आधारित उन्होंने कई चित्र बनाए, जिनमें से एक चित्र को तो विदेशों में भी खूब प्रशंसा मिली। ये चित्र था राजा दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का। इस चित्र को अंग्रेज विद्वान सर मोनियर विलियम्स ने देखा तो वो बहुत प्रभावित हुए। सर मोनियर विलियम्स ने कवि कालिदास के नाटक शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वो इस चित्र को अपने अनुवाद के मुख पृष्ठ पर छापना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने रवि वर्मा से अनुरोध किया कि इस चित्र को छापने की उन्हें अनुमति दें। रवि वर्मा ने अनुमति दे दी। इस चित्र के मुख पृष्ठ पर छपने से इसकी देश विदेश में खूब प्रशंसा हुई और किताब भी खूब बिकी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजा रवि वर्मा, और अब इसी के साथ हम आज के उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: मीडियम इकंग अच्छे आकाशवाणी करके लिए करना जेन हो तो वक्स पुत सुम संसुक कसता ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस करना प्रोग्राम उन फिर चुके रिलेला गेर बाजे।

आज आप सुनेंगे मुझसे शादी करोगी फिल्म की कहानी और नगमे। 4 बजे से आप फिल्मी नगमों का लुत्फ ले सकेंगे। ये प्रोग्राम शाम के 4:50 तक सुना जा सकेगा। शाम के 4:50 पर खबरें नष्ट होंगी और 5 बजे आज की दूसरी मजलिस खत्म हो जाएगी। ये थी एक नजर इस मजलिस में नष्ट होने वाले प्रोग्रामों पर।

से 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात आप सुन रहे हैं। अब से चंद ही लम्हों के बाद खबरें नशर की जाएंगी।

जन आरोग्य योजना को रियासत में नाफिज नहीं किया गया था। भारत मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में इस माह की 9 से 13 तारीख तक ब्रिक्स एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप और ब्रिक्स जरई बुजरा की अहम मीटिंगों की मेजबानी करेगा। आज भोपाल में एक ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जरात के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये मीटिंगें इस साल भारत की ब्रिक्स सदारत के तहत मुनाकिद की जाएंगी। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स एक ताकतवर आलमी प्लेटफॉर्म बन गया है। उन्होंने मजीद कहा कि ब्रिक्स मेंबर ममालिक के पास दुनिया की कुल जरई आराजी का 42% हिस्सा है, नीज आलमी गजाई एशिया का 45% हिस्सा यही ममालिक पैदा करते हैं। जनाब चौहान ने एतमाद का इजहार किया कि मीटिंग ब्रिक्स जरई ताउन को नई समत अता करेगी। फिलीपीन के जनूबी खित्ते मिंदानाओ में आज सुबह सवेरे 7.8 शिद्दत के ताकतवर जलजले के सबब 16 अफराद हलाक और 200 जख्मी हो गए। जनरल सैंटोस शहर में कुछ इमारतें मुनहदिम हो गईं और अहम बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा कम से कम एक साहिली गांव में सुनामी से हुए नुकसान की भी इत्तला मिली है। इंडोनेशिया और पलाओ और यहां तक कि जनूबी जापान में भी सुनामी के सबब छोटी लहरें देखी गईं। जलजले का मरकज मिंदानाओ जजीरे के जुनूब मगरिब से 33 किलोमीटर के फासले पर था, लेकिन इसकी गहराई 32 किलोमीटर थी। ये जलजले के झटके इंडोनेशिया के शिमाली सुलेवासी और शिमाली मलुकू सूबों में भी महसूस किए गए। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर फिर से मिसाइल हमले किए हैं, जिससे मगरबी एशिया में बहरान बढ़ गया है और जंगबंदी भी खतरे में पड़ गई है। ईरान के सिपाही पासदारान इनकलाब ने इसराइल के अहम फौजी ठिकानों पर कई हमले किए। इनमें इसराइल के सबसे अहम दो फजाई के अड्डों को निशाना बनाया गया। इस कार्रवाई को ऑपरेशन नसर का नाम दिया गया था। मीडिया इतलात के मुताबिक 3 अलग अलग मकामात पर इसराइल के मिसाइल हमलों में ईरान के रडार मराकज को निशाना बनाए जाने के जवाब में ईरान ने यह कार्रवाई की है। उधर इसराइली फौज ने जो मगरबी ईरान में एक बड़े सनाती ठिकाने पर फजाई हमले करने की बात की तस्दीक की है। इसराइल की दिफाई अफवाज ने ईरान के तलीदी अहमियत के हामिल साहिली इलाके में वाक महाशहर में वाक एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में कई ठिकानों पर हाल ही में हमले किए थे। इस तरह जंग खत्म होने की कोशिशों के ताल्लुक से गैर यकीनी की कैफियत पैदा हो गई है। ये लड़ाई इस साल 28 फरवरी को शुरू हुई थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू पर जोर दिया है कि वो ईरान के मिसाइल हमलों पर जवाबी कार्रवाई न करें। उन्होंने ये तंबीह भी की है कि ऐसा करने से कयाम अमन समझौते के लिए की जाने वाली कोशिशों को जख्म पहुंचेगी। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के मिसाइल हमलों से मुजाकरात में खलल पैदा नहीं होगा। साथ ही उन्होंने ईरान से जोर देकर कहा है कि वो बातचीत का रास्ता अपनाए। अमरीकी सदर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बहुत जल्द किसी समझौते पर दस्तखत किए जाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमरीका समझौता करने के करीब पहुंच गया है। उन्होंने ये वार्निंग दी कि किसी तरह के मजीद टकराव से इन कोशिशों को नुकसान पहुंचेगा। ये आकाशवाणी है। चीन के सदर शी जिनपिंग दो रोजा सरकारी दौरे पर शिमाली कोरिया पहुंचे। ये जनाब जिनपिंग का तकरीबन 7 वर्षों में प्योंगयांग का पहला दौरा है। चीनी सदर के इस दौरे का मकसद अपने देरीना साथी शिमाली कोरिया के साथ ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करना है, जो हालिया वर्षों में रूस के साथ ज्यादा करीब हो गया है। तवक्को है कि दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत के दौरान इक्तसादी तआवुन, कोरियाई जजीरानुमा से वाबस्ता सिक्योरिटी मामलात और शिमाली कोरिया चीन और रूस के दरमियान बाहमी तआवुन को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। आकाशवाणी आज अपने कयाम के 90 साल पूरा होने का जश्न मना रहा है। 1936 में आज के ही दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया था। ये तारीखी दिन मुल्क की सकाफत इत्तेलात और नशरियाती तारीख में एक खसूसी लम्हा था, जिसकी आवाज नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ती गई। आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो खदमात को तेजी के साथ वसत दी गई और 1956 में उसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 स्टेशन काम कर रहे हैं, जो भारत के 98% आबादी तक पहुंच रहे हैं। आकाशवाणी 23 जबानों और 146 इलाकाई बोलियों में मुख्तलिफ प्रोग्राम नशर कर रहा है। आकाशवाणी का गैर मुल्की नशरियात का शोबा 100 से ज्यादा मुल्कों में अपनी नशरियात खिदमत फराहम कर रहा है और आलमी सतह पर भारत की आवाज को पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अजीम ख्यालात पर अमल करते हुए आकाशवाणी का खबरों का शोभा एनएसटी मुल्क के हर शहरी को, खा वो किसी भी खत्ते में रहता हो, 24 घंटे सातों दिन तमाम अहम जबानों और बोलियों में खबरें और नजरियात से हमकिनार कर रहा है।

0: सवेरे नेपाल सरहद के नजदीक गिरफ्तार कर लिया। मालूम हुआ है कि वो सरहद पार फरार होने की कोशिश कर रहे थे। एसटीएफ के अहलकारों ने खुफिया इत्तला मिलने पर कार्रवाई करते हुए इन्हें हिरासत में ले लिया। जहांगीर खान को मजीद पूछताछ के लिए कोलकाता लाया जा रहा है। उनकी गिरफ्तारी से कबल गुज़श्ता चंद हफ्तों से यह कयास आरई की जा रही थी कि वो कहाँ हैं। इससे कबल कलकत्ता हाई कोर्ट की बेंच ने 5 एफआईआर के मामलों में उनके लिए उबूरी तहफ्फुज की मुद्दत में तौसी करने से इनकार कर दिया था। रियासत में सरकार बदलने के बाद कई गांव वालों ने जहांगीर खान के खिलाफ जमीन हड़पने और जबरन रुपया वसूल करने के इल्जाम लगाए थे। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट सुखेंदु शेखर रॉय ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया है। जनाब रॉय ने न सिर्फ ऐवाने बाला से बल्कि तृणमूल कांग्रेस की इब्तदाई रुकनियत से भी सुबुकदोश हो गए हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी मुनशियात की स्मगलिंग के नेटवर्क से वाबस्ता मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिजोरम म्यांमार सरहद त्रिपुरा बांग्लादेश सरहद और मगरबी बंगाल में 4 मकाम पर तलाशी की कार्रवाई कर रही है। इस केस का ताल्लुक मुनशियात पर कंट्रोल से मुतालिक बोर्ड के अगरतला जोनल यूनिट की जानिब से मुनशियात जब्त किए जाने से है। इस मामले में 49 किलोग्राम से ज्यादा मेथाफिटामाइन और 40 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। तहकीकात से यह इंकशाफ हुआ है कि मुनजिम सरहद पार ग्रोह म्यांमार से यह नशा और मादा हासिल कर रहा था। इस जुर्म के इरतकाब से हासिल होने वाली 142 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम की अब तक निशानदही की गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने कहा है कि इस महीने की 2 से 2 तारीख से 7 तारीख तक 12वीं क्लास के इम्तिहान के पर्चों की फिर से जांच और तस्दीक के लिए जो वक्त दिया गया था उसमें 3,08,000 से ज्यादा इम्तिहान के पर्चों के लिए 1,60,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने अपनी दरख्वास्तें दाखिल की हैं। बोर्ड ने कहा है कि वो शिकायत के अजाले के अपने निजाम हेल्पलाइन नंबर और दीगर मवासलाती वसीलों के जरिए तलबा की तमाम हकीकी शिकायतों पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंत्योदया से तरगीब हासिल करते हुए गरीबों की बहबूद को पिछले 12 साल में सरकार की पॉलिसियों में बुनियादी मकाम हासिल रहा है। फिलीपीन के जनूबी खित्ते में तनाव में आज सुबह सवेरे 7.8 शिद्दत के ताकतवर जलजिले के सबब 16 अफराद हलाक हो गए। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर मिसाइल हमले किए हैं जिससे मगरबी एशिया बहरान फिर से बढ़ गया है। और आकाशवाणी आज अपने कयाम के 90 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, हमारी नशरियात आप सुन रहे हैं मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और डीडी फ्री डिश पर। अब पेश है प्रोग्राम मेरी।

पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। लीजिए अब सुनिए प्रोग्राम कहकशां। आज की फिल्म है मुझसे शादी करोगी। फिल्म की कहानी को तरतीब दिया है मोहतरमा राज हिमानी ने।

वादा करो कि तुम अब आइंदा कभी लड़ाई झगड़ा और मारपीट नहीं करोगे। सभी दादी की कसम खाकर वादा करता है और गोवा के लिए रवाना हो जाता है। जाते जाते वो दादी से कहता है कि उससे उनकी बहुत सेहत रहती है, क्योंकि अभी उनके आंख का ऑपरेशन करवाना है, बहन को पढ़ाना है और उसकी शादी करनी है। दादी बच जाते वक्त उसे बहुत दुआएं देती है। समीर चोर के जिस डिब्बे में बैठा है उसी में रानी यानी प्रियंका चोपड़ा के मामा मामी भी बैठे हैं। समीर रात भर जाकर उनके सामान की रखवाली करता है। गोवा पहुंचने पर समीर की मुलाकात राज नाम के ज्योतिषी से होती है। राज ज्योतिषी यानी राजपाल यादव की पेशेंगी अक्सर गलत निकलती है। समीर राज के साथ दुगल यानी कादर खान के मकान में किराए पर कमरा लेने के लिए आता है। ज्योतिषी समीर को बताता है कि दुगल के दिमाग में कुछ प्लॉट्स जम गए थे, इसलिए वो कभी अंधे हो जाते हैं तो कभी बहरे। समीर को दुगल की बीमारी का सबूत देखने को तभी मिल जाता है क्योंकि वो कभी समीर को बल्ची दूध वाला समझ कर दूध लाने को कहते हैं तो कभी राज ज्योतिषी को भी बल्ची समझ लेते हैं। बाद में बातचीत करने के बाद दुगल समीर को कमरा किराए पर भी देता है। दुगल के घर के ठीक सामने कादिर साहब यानी अमरीश पुरी का फ्लैट है, जिसमें वो अपनी इकलौती बेटी रानी के साथ रहते हैं। उन्हीं के साथ उनका प्यारा कुत्ता टॉमी भी रहता है, जिसे कर्नल और रानी बहुत प्यार करते हैं। समीर जैसे ही अपने कमरे की खिड़की खोलता है तो सामने का नजारा देखकर उसके दिल की घंटी टन टन बोलने लगती है। वाह क्या नजारा था! खिड़की के ठीक सामने कर्नल साहब की लाडली हसीन नाजनीन रानी खड़ी थी। खूबसूरत और जवान रानी को देखते ही समीर उस पर फिदा हो जाते हैं। उसे पहली नजर में उससे प्यार हो जाता है। समीर राज से कहता है कि वो उस हसीना से इसकी मुलाकात करवा दे। राज ज्योतिषी उसे रानी तक पहुंचने की तरकीब बताता है, मगर समीर की किस्मत उसका साथ नहीं देती और रानी और उसके अब्बू का दिल जीतने की उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। कर्नल साहब का दिल जीतने के लिए वो जो भी तरकीब बनाता है वो फेल हो जाती है, और बजाय कर्नल साहब को इम्प्रेस करने के लिए वो बहुत ही डिप्रेस हो जाता है। नतीजतन फूटी किस्मत और टूटा दिल लिए रानी का ही महबूब सिर्फ ख्याल में ही रानी के साथ नाचता जाता है।

शिवकुमार उसके प्यार में आग लगाने आ पहुंचा। दुर्गा सभी को उसी के कमरे में उसका रूम पार्टनर बनाकर बतौर किराया पलट लेता है, यानी अब आधा कमरा सुनील का था तो आधा सनी का। जब कमरा एक और किराया दो हो और वो भी अलग अलग तबीयत के और शौक वाले तो नोकझोंक होनी तो लाजमी थी। सुनील को अक्सर दीवार पर देवी देवताओं की तस्वीरें लगाने में दिलचस्पी रहती है तो सनी को फिल्म अदाकारों की। सनी खिड़की खोलकर सामने वाली हसीना रानी के हुस्न का दीदार करना चाहता है, मगर सनी को ये सब पसंद नहीं। वो सनी पर गुस्सा होता है तो सनी से पूछता है कि ज्यादा गुस्सा मत दिला वरना कमरा गर्म हो जाएगा। सनी जब मकान मालिक दुग्गल को शरीफ लड़का कहता है तो सनी उसकी बेदबी पर नाराज होकर कहता है कि वो इस कमरे में उसके साथ नहीं रहेगा, मगर उसकी हर टोका टापी का सनी खुद ही जवाब देता है और आधा कमरा उसका है। अब ऐसे में बेचार सनी करेंगे तो क्या करे, हर थक पर वो मन महसूस कर रह जाता है। उधर रानी के इश्क के चक्कर में सनी और सनी दोनों कर्नल साहब को पटाने के चक्कर में रहते हैं। अगर सनी कर्नल साहब को इम्प्रेस करने की कोशिश कर सकता है तो भला सनी इस मुहिम में पीछे क्यों रहता, वो भी रानी के साथ अपनी प्रेम कहानी की शुरुआत करना चाहता है। लिहाजा एक दिन कर्नल को पता नहीं वो उनके फ्लैट पर पहुंच जाता है और उनकी गर्दन में आए झटके को मसाज करके ठीक कर देता है। ये झटका सनी की वजह से ही कर्नल की गर्दन में आया था। कर्नल सनी से खुश हो जाता है और सनी को बड़ा बुरा कहता है। बस फिर क्या था, बाप खुश तो बेटे पहुंचा, मतलब कौन सा मुश्किल काम था। सनी दौड़ता हुआ अपनी महबूबा के पास पहुंचता है। राजजोशी जब समीर को सनी रानी का ये रोमांटिक नजारा खिड़की से दिखाता है तो वो जल भूल जाता है। अच्छा तो रूम शेयर करने के साथ साथ ये सनी का बच्चा उसकी महबूबा को भी शेयर करने लगा। वो दांत पीस कर रह जाता है क्योंकि उसने गुस्सा न करने की कसम जो खा रखी थी। उधर एक रोज समीर को जब पता चलता है कि उसकी चाहत रानी फैशन शो में हिस्सा लेना चाहती है मगर एंट्री फीस के लिए उसके पास पैसे नहीं है तो बहन की शादी के लिए जोड़े हुए पैसों से चुपचाप रानी की एंट्री फीस भर देता है, मगर वो रानी को इस बात का इल्म नहीं देता। उधर सनी पर भी रानी की जवानी का सुरूर हरदम चढ़ा रहता है। सनी और सनी ख्यालों में ही रानी से अपने इश्क का इजहार करते हैं।

उसे धीरे धीरे इश्क करने वाले समय अपनी गला तोड़कर उसके फीस चुपचाप भरता है और दूसरी तरफ चालाक समी इस बात का क्रेडिट खुद ले लेता है। उसके लच्छेदार बातों में आकर रानी समझती है कि उसने फीस के लिए पैसे समी नहीं दिए हैं। रानी उससे इम्प्रेस हो जाती है। एक रोज सनी और समीर एक डांस शो देखने के लिए जाते हैं। जब फैशन शो में रानी को पहला इनाम दिया जाता है तो अपनी इस कामयाबी पर खुश होकर वो अपने उस अनजान दोस्त को स्टेज पर बुलाती है जिसने उसकी एंट्री फी जमा की थी। मगर इससे पहले कि समीर स्टेज पर जाता सनी वहाँ पहुँच जाता है। रानी खुश होकर सनी को गले लगा लेती है। एकदम यानी इश्क के इस खेल में एक बार फिर समीर बाजी हार जाता है। रानी सनी के साथ चल देती है तो जहर बना समीर मोटरसाइकिल से उन दोनों का पीछा करता है। पर हाय की किस्मत, गुस्से और जल्दबाजी में एक बार फिर वो कर्नल से टकरा जाता है और कर्नल को चोट लग जाती है। पहले से खफा कर

बना देते हैं। ये देखकर रानी भी उसे खुद से दूर करने को कहती है। बेचारा समीर का दिल एक बार फिर टूट जाता है, मगर रानी के लिए उसकी चाहत फिर बेकार नहीं होती। वो ख्यालों में रानी को देखता है।

कोशिश भी नाकाम हो जाती है। जब समीर मायूस हो जाता है वो दादी माँ को सारी बात बताता है कि वो रानी को दिलो जान से चाहता है, मगर उसके अब्बू उससे बहुत नफरत करते हैं। पोते की परेशानी देखकर दादी माँ से रहा नहीं जाते और वो कन्हा के पास जाकर समीर और रानी के प्यार के बारे में कहती है।

थोड़ी तैयारी से हवा से छोड़।

कभी से अब्राहम ही जाता है, वो खुद और रानी से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए पूछता है कि मुझसे शादी करोगी। रानी हाँ कहती है तो समीर खुश हो जाता है, और समीर वो भी कम खुश नहीं था, क्योंकि दरअसल समीर तो समीर का वो बचपन का दोस्त अरुण था जो काफी साल पहले विदेश चला गया था। वो तो गोवा में सिर्फ समीर का साथ देने के लिए आया था। रानी को समीर सब कुछ पहले ही बता दिया था। समीर और समीर को बचपन की बातें याद आती हैं, दोनों खुशी में गाते हैं।

خزانه

सुन रहे थे तोहफा फिल्म का नगमा। आवाजें थी किशोर कुमार और आशा भोसले की। आइए सुनते हैं शराबी फिल्म का नगमा, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में।

0: की पेशकश लगान फिल्म से थी, आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक और साथियों की। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, अब खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप मोहम्मद आजम खान से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अंत्योदय से तरगीब हासिल करते हुए गरीबों की बहबूद को पिछले 12 साल में सरकार की पॉलिसी में बुनियादी मकाम हासिल रहा है। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर मिसाइल हमले किए हैं, जिससे मगरबी एशिया बहरान फिर से बढ़ गया है। फिलीपींस के जनूबी खित्ते मांडियानों में आज सुबह सवेरे 7.8 शिद्दत के ताकतवर जल्जिले के साथ 16 अफराद हलाक हो गए। आकाशवाणी आज अपने क्याम के 90 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। और न्यू चंडीगढ़ में खेले गए वाहिद क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 1 इनिंग्स और 300 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए महबूद के सरकार के 12 साल के सफर को उजागर किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि मुल्क में कई बड़ी तब्दीलियां आई हैं और इन तब्दीलियों में गरीब कल्याण और महरूम तबकों को बुनियादी मकाम हासिल है। जनाब मोदी ने कहा कि सरकार ने हमेशा अंत्योदय से तरगीब हासिल की है और हमेशा इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की गई कि तरक्की के फायदे उन लोगों तक भी पहुंचे जो कई दहाइयों से पिछड़े हुए थे। वजीर आजम ने कहा कि लोगों की अजमत वकार और मौकों को यकीनी बनाने के मकसद से जनधन अकाउंट्स फायदों की बरए मुंतकली, स्वच्छ भारत, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसे इकदाम किए गए। जनाब मोदी ने कहा गरीबों के बेहतर मियार जिंदगी को यकीनी बनाने में टेक्नोलॉजी ने अहम रोल अदा किया है। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर फिर से मिसाइल हमले किए हैं, जिससे मगरबी एशिया में बहरान बढ़ गया है और जंगबंदी भी खतरे में पड़ गई है। ईरान के सिपाही पासदारान इंकलाब ने इसराइल के अहम ठिकानों पर कई हमले किए, इनमें इसराइल के सबसे अहम दो फिजाई अड्डों को निशाना बनाया गया। इस कार्रवाई को ऑपरेशन नसर का नाम दिया गया है। मीडिया इत्तलात के मुताबिक 3 अलग अलग मकाम पर इसराइल के मिसाइल हमलों में ईरान के राडार मराकज को निशाना बनाए जाने के जवाब में ईरान ने कार्रवाई की है। उधर इसराइली फौज ने जुनूब मगरबी ईरान में बड़े सनअती ठिकाने पर फजाई हमले करने की बात की तस्दीक की है। इसराइल की दिफाई फौज ने ईरान के कलीदी अहमियत के हामिल साहिली इलाके में मशार में वाकई एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में कई ठिकानों पर हाल ही में हमले किए थे। इस तरह जंग खत्म करने की कोशिश के ताल्लुक से गैर यकीनी कैफियत पैदा हो गई है। ये लड़ाई इस साल 28 फरवरी

0: 564 रन बनाकर अपनी पहली इनिंग्स खत्म करने का ऐलान कर दिया था। भारत के इस बड़े स्कोर में कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल की सेंचुरियों का अहम रोल रहा। खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अंत्योदय से तरदीब हासिल करते हुए गरीबों की बहबूद को पिछले 12 साल में सरकार की पॉलिसियों बुनियादी मकाम हासिल रहा। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर मिसाइल हमले किए हैं, जिससे मगरबी एशिया में बुरान फिर बढ़ गया है। फिलीपींस के जनूबी खत्ते में आज सुबह सवेरे 7.8 शिद्दत के ताकत और जल्जले के सबब 16 अफराद हलाक हो गए। आकाशवाणी आज अपने क्याम के 90 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। न्यू चंडीगढ़ में खेले गए वाहिद क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को एक इनिंग्स और 300 रन से हरा दिया। आकाशवाणी से खबरों के बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अभी तक आप सुन रहे थे उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस। शाम के 5 बजने को है। अब हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर होती हैं। रात 9:15 पर तीसरी मजलिस की नशरियात लेकर हम एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।
2: सामीन मोहतरम, अभी तक आप हमारे नशरियात ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से समाप्त कर रहे थे। मीडियम में 684 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी करगिल से बोल रहे हैं। सामीन, अब से लेकर रात 10 बजे तक आप हमारे नशरियात मीडियम वेव 684 किलोहर्ट्ज़ के अलावा मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज़ पर भी सुन सकते हैं। हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। अस्सलामु अलैकुम। मीडियम वेव त्रुग्यानंग इशुजबी नजबी किलोहर्ट्ज़, मीडियम वेव सोचे नगबग्यानंग इशुजबी नजबी किलोहर्ट्ज़, दुना गच्ची मोबाइल ऐप न्यूज़ अनारिका गचस आकाशवाणी करगिली का नाजरिन्युत वक्स बुतुसुत गसोंसुक दिरिंग जकपू चंद्राल जूनिल जी रिगियत दिरिंग फ्रचुपायुत पी प्रोग्राम उन जुबेस लाखुरी गचगयांग एंती दुनु क्लिप्सियुत गची जून सलाम पू फ्रुदमचन सोशिक सखबत सिक्सनान ला दोया प्रोग्राम सदाकत ला गुजुगबेत दि प्रोग्रामी रखसे का न्यन मजत सखम कुरानी तिलावत ना तर्जुमाला मुल्कन पु इन हज्जतुल इस्लाम शेख मोहम्मद ईसा हाफिजी।
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: मिशन में जीरो ग्रेविटी सिमुलेशन, स्पेस वॉक ट्रेनिंग तथा स्पेशलाइज स्पेस फ्लाइट ऑपरेशन भी शामिल थे। इनके अदम्य साहस एवं असाधारण वीरता के लिए एयर कमोडोर प्रशांत बालाकृष्णन को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। एयर कमोडोर प्रशांत बालाकृष्णन नायक।
1: Proud family, with a round of applause, proudly receiving the Kirti Chakra. This is Group Captain Prashant Balakrishnan Nair, Flying Captain, Flying Pilot in the Indian Air Force.
0: Captain Lalvin Omar Silo, Parachute Regiment.
2: और अब विशेष दल चार पैराशूट के कैप्टन लाला रिनाउ साइलो आमंत्रित किए गए हैं कीर्ति चक्र के लिए।
0: कैप्टन साइलो को श्रीनगर इलाके में एक आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई। घने जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान आपने एक संदिग्ध गतिविधि देखी, मिनी आरपीबी द्वारा
3: लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा ने कहा है कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5,00,000 रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायालय की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और सीबीएसई से जवाब मांगा है। बम्बई शेयर बाजार का समिति सूचकांक आज 719 अंक गिरकर 73

2524 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 244 अंक की गिरावट के साथ 23123 पर आ गया। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कार्डिफ में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 180 रन का लक्ष्य दिया है। वेस्टइंडीज ने 10 ओवर में 2 विकेट पर 75 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडिया मुख्यांगाचेस आकाशवाणी करगिली कना जिरिनुत
1: ए बुद्धो नई कार जीतने का मौका वाव पापा को सरप्राइज दूंगी बस थोड़ी सी तो उनकी तफसील भरनी है
2: रुक जा बुद्धो
1: क्या
3: ऐसे पॉपअप से होशियार रहो स्कैमर्स जाती तफसीलात का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं
1: ओ
2: तो समझ गई ना रिलैक्स
1: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कर पाते
3: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो
1: कूल रहो

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: यारे फायदे गुली लेने दे बेने गुली को या 1,80,000 कमो देनी तामत रेजवे ची चुए फिला चना दो दसो दे जुगजाक ची बसे चो से बेने फिंग दो ची बसे का तो चो ना गोरमेन ला नुकसान चो और नतान नती फिला नुकसान चो जगह खराब सो और खास कर तना वो दी जगह चो से नफल लगा पहला दिन दाओ साफ सफाई सखद हो मोशिन और ट्रॉट फिश फिला सबसे ज्यादा को साफ सफाई को बस अगर का तो या जिंग सा तो छू तंसना जिंग यूरिया छू का तो ना वो दी शीशे सो संगेन में दो और खास कर स्टोनी टेंपल का लूज और नॉर्मल बैलेंस होता है ना देन बैलेंस आज या शुमी गुने नो गंदगी का तो बना उदी छू सान काफी असर तान दो ग्रोथ का असर छेन दो और शीशन छेन दो छानस वेरी टेंपल नो अगर मौसम पो ज्यादा देन गर्मी से हीट सो से छू का तो डोनो छाना दे टेंपल का शीशे छेन दो छाना दे फिला जगह सब सखत पहले का जगह मौजूद हो छदो और उदी का मेहनत पे छमो दो मेहनत छानी मा उदेन ड्यूटी ता से जैसे कि ग्रोवेल जरना सबसे बेस्ट ब्रांड 20 kg 3,500 या 3,500 रुपए 20 kg कीमत पे हो जाए ना दो बस सस्ता वहां हो जाए दो बस बलान शाह हो जाए इन दोनों का तो ताना ग्रोथ हो जाए इन दाम तो उस मतलब टेस्ट वो खराब से चाहिए तना दो मिन मैं दारे मार्केट आए हैं सोमा सोमा दारे यहाँ अर्धेर ना फीस ले बैठ खाजूल से नगर ले बैठ उदयन तरह हम बूस्टर जरिए चिक करनी होंगे फीट ची होंगे
1: कैसा
0: यदि फीट पोस 9 महीने तक है ना चार 4 महीने ना 5 महीने ना चार त्यार चार चुक चार बना तो ये सिल्विया सभी का कौन सा जन लोग की ना चाहिए फीट बताना आता 4-5 महीने ना देन फीस पे त्यार चाहिए जरे को दारे आते करपू मार्केट है ब्याह मिसाल 2-3 महीने तैयार जितना जल्दी तैयार उतना टेस्ट पो कम चाहिए और लोकल चीज पे जितना टाइम लगे सो उतना टेस्ट पे नोड़ और प्रोटीन वोटीन गाँव सही चाहिए जमाना दारे ग्रोवेल जरना ग्रोवेल पोला 3,500 रुपए से आते हों 20 kg 3,500 रुपए और दारे अच्छी पश्चिमी फार्म पे कम से कम 80,000 पीस जितने सुनते हैं या फिर 80,000 रुपये और दरें अच्छा कम से कम 80-90 क्विंटल रखें अच्छा उधर लोग तैयार सों से पिन और दोनों लोग तैयार भी फिला 20 kg वजह का कम से कम 40-60 kg अच्छा जानवर तंग रोज पे और दे सब ना अच्छा फीट्स पॉम्बलिक महंगा रिचार्ज और दरे बाजार रेट उनका इन ना अच्छे रो बुलिक महंगा रही होते हैं तो यहाँ दरे बाजार लसुमा फेज होते खाने उनके यहाँ का थोड़ा दोनों सस्ता है और यार करगिल चौट कॉर्नर ही घर ब्रांच का तो इतना या बेकन मोड पेट्रोल पंप आयो थी या दाज लाइ होती या बरू खुरा कोबरे टीपी हटियां का तो इतना अच्छी रेट पो इन बस एक महंगा रही हो जाए महंगा होती अलामत पे दिया इनकी अच्छी रो एक महीना एक साल लमेने अच्छा फिश पे तैयार अच्छी रो एकदम मतलब तंग दिचिक सीट पे तंग 4 महीने के अपने तैयार सो सेलेबल छे सब चीज तो इच्छा मिशा और दिया शॉर्टकट चे दो कि जितना आते बूस्टर वोस्टर तंग से अंतर धरे समथिंग अति शावा याशाल इनखन नदन पब्लिक टेस्ट पिक पब्लिक फरक से चाहिए एंटर एंटर यूं से मिसाल ताचा कि जल्दी गा चीज को जितना जल्दी हो खासकर मीट है नो गा चीज को जितना जल्दी तैयार से सपो उतना टेस्ट पनो कम चंद कसम
1: कसे जो बख्शे जो छाना निगा अति किसान चीज है जो दी स्कीम पो की गवा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जर पतंग उदी स्कीम ही नाल जोंस का तो हा लाज बसे दिस ऑफिस फार्मिंग टाउन उसम का तो सबसे पहला खोगा सुक लाज शिक बार को सेंदु देश को लच मिलना
0: दरे अगर कतोगा फार्मर से गया स्टूडेंट से गया बोमे गिन चाहे बुसे गिन सुस अगर कतो फिश फार्मिंग है नो कतो नतेजे नो लाज बुक सामना दी बिजनेस पो का तो आगे खेरो का तो सामना बिजनेस में लस रियला होता अगर ठीक बस मेहनत तो बस बना और गवर्नमेंट की तरफ से पहले का बुलिक सब्सिडी रही है देर के अपना उन्होंने खर्चा गाड़ी के अंदर गाता है बचाई दो फिलहाल आता है दरे खरुलकियों का कौन फिशरीज ऑफिस लस कौन फिला एप्लीकेशन के क्वेश्चन उदी करना कौन साइट विजिट बस है कौन साइट इकलता है उसे जगह ची दुख जगह जुमजुम ची दुख छू ची दुख यहाँ चाह बाहरी छू सड़ा शमिंदो गंदगी शमिंदो साबुन छू सड़ा शमिंदो दोनों गाँव में फिलहाल कौन विजिट उनसे दरे अति चिकनान पे इंस्पेक्टर वाकर साहब जरे कौन साइट विजिट हो मत कहना कौन सा साइट के यहाँ से विजिट बस एलता से ची ची दुख जरे दोन गांव एलता से अगर का तो जुमजुम रही का तो यद ना कोई एप्लीकेशन पे कौन सा एक्सेप्ट बस है देखा कौन आगे प्रोसेस बचाई है लेकिन दरे यहाँ तक जो समझे तो तू गवर्नमेंट ही करना दिया वो फिलहाल चिक दस गुजार चुका से पैनिक फिंग से तो कौन सा ना दरे दस ना से टेम्पल लूसे हमें दरे गांव ऑनलाइन सोच गांव अपडेट चारों उस पर दरे खासकर

0: कोऑपरेटिव अचान कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन छाना अच्छी बराबर जीपीएस कैमरे के को उदुन गामे अपडेट ताम और उस पर फॉर्म पोगा चाय ची यो अरे अच्छी ना तम अकाउंटेंट यो दे लाज बखन यो अकाउंटेंट यो दे सी यो एमओडी यो दुन गामस अप टू डेट महीना महीने दुन गामे अपडेट ताम उस पर चम सेल सो ची सो चम ची शी से चम ची दर सो यो सीट चम ची यो सीट चम ची ताम दर दुन गामे डिटेल अपडेट ताम और उस पर दरे को पीए देन एफपीए देन यो अति दिल्ली तरफ से अचान दुन नंबर फोन नंबर रजिस्ट्रेशन सो तो खून सा दरे टाइम टू टाइम उन गांव में जानकारी खून से खेलने लग जाए दरे यह सुमंग अति फार्मर्स जो तेंगा तभी का तो बहुत जन्नर गया लो अगर सुस का तो दें का तो मेहनत का तो बना खास कर दरे इस बियरी टाइम पे का सात छह टाइम पे का अति अलग समर से बोलता हूँ से दो अति खर्चे के तांग से या समर से बोले अगर हम उच्ची पिंचा बार वो शायद ना यार गुनी टाइम पे गांव से टाइम पे दोनों गांव सुबह शाम चार से गांव वहां से छून सा रनिंग पोलूशन पर सबसे जरूरी अगर का तो छू रनिंग का तो मालूम ना दें ऑक्सीजन मिलने में चुप से जाना काफी नुकसान हो मत मेहनत बस अगर का तो नुकसान का तो यू चाहे हम गवर्नमेंट ला नुकसान और फार्मर ला नुकसान छाना दे फिला अगर का तो दिल लाइन पर कहता हूँ चिन्ना या कुछ ठीक बस मेहनत भूख सम का तो समना रियला और यूं यूं मोशन सख या नौकरी वोकरी इंतजार है मधुक पर राम का तो फार्मर का तुलना सबसे बढ़िया है सुकून युद और लस पर बेहतरीन लस चाहे गवर्नमेंट की तरफ से इतना पहले के पब्लिक सपोर्ट को छचा ही चाहे इतना सुखा अगर का तो दी फील बैंक का तो हम सन्ना नमो ईश्वर
1: बख्शीश यो मनसल पो बसेरिस मोलसं छाना निदान चोलांग आता दी ट्राउट फिश पोगी गाव किंग अति खत्ते लदाख सुख हजो गानें की ग्रांग मो छुएतां दुने नुंगातां दुन सर्वाइव छातानी छाना दी शिंग्यान ला लक्सुन नातु निशिते नसुंग सिजक पिपिला गजुक तरीका रिगो या गजुक सुमान जिकोल बचात
0: तरां पो अति खास कर लदाख है नुग ट्राउट फिश फिला या लदाख हिमाचल साइट है नुग लदाख से डनुग गर हिली एरिया यो गाँव ना स्नोफॉल इशू मत ग्रामो इशू का तो मनना उदय नुक ज्यादा शी चांस पो कम छात और जैमोर में जितना चांस पो ज्यादा कम छे खास कर दरे अच्छी पश्चिमी फॉरम पे का तो इन दिन स्पीक अचान तो छो नुकसान चेक जरमो से याद न सो से नुकसान हो हंचमेन और गा फॉरम चिका दे सिख नुकसान चिक मयो से और गर फॉरम के नुकसान का तो यूं से ना या छू चते छू बन बस्तन से देखा नुकसान हो जो या जिंग सा यूरिया छू सा वसे गंदगी साबुन छू से देखा नुकसान हो जो और या मैं ना या फेंसिंग वेंसिंग बराबर प्रॉपर फेंसिंग मत पाया उदन केयरलेस हो से देखा या फूसा हो से गंदगी बस्तन से या नुकसान हो से दिया हम बाकी खास नुकसान से मत और अगर का तो फिर भी का तो गलती से या देन किसी का तो बीमारी से से तो से का चाचा का तो ना आर्टिफिशियल डिपार्टमेंट ला हूं ला शो एक्सपर्ट और कौन से कुंती उदी ची मेडिसिन ची का तो रोज पर ना फोन ला अवेलेबल हो चुके और नाचा दिन सुबह तो चुनो बच्चे में यों सुन के तो सो जरूर में यों से लोग शिक्षा एक जरूर तो सोचे चाहे मसों से और खास कर दरे बात चीजें पे नो दोषी हों तो उदी नो ना सख्त एहतियात तो पर वैसे इंसान ये मलांस दुख से यहाँ बाहर इशू मरे और बिल्कुल साफ शू ट्रॉट फिश फिला जितना साफ शू सों और जितना ऑक्सीजन फ्लोर दे मो सों दे ने सपो दो रियल
1: कसजु देने तो लगा सगेत पचीस हजो दिस की मिनाल जो लाज बुक समसे लाज बस तदे के ना खवा मतलब आईडी मत गा सुखला है फॉर्म पुचो चेसे इंडिया का तो हा देनु न्या का फील्ड सम सी बार गो छस इन जेरे के दु तो ला खवा ट्रेनिंग छ छाता की दे सुग जा आईडी हिसाब छ का सुख छपसे दु तैयार छत
0: नरेंग अति गर्गिली फिशरीज डिपार्टमेंट से का पहला जो ट्रेनिंग रिचे न सुख जैसे कि आचा सब या अति सम से गर्गिली फार्मर्स का तो ना या दिल्ली इन कर्नाटक इन केरला इन या अंडमान निकोबार साइड ला कोस गवर्नमेंट ट्रेनिंग फिला कोस अप्लाई वजर ऑनलाइन एप्लीकेशन भी इंदो और दे लोग अच्छी मेन पो को अकाउंटेंट या सीओ या बीओडी मेंबर छ को दे ट्रेनिंग कोस खेर इंदो और दे ट्रेनिंग पो पूरा सब्सिडी कयो म

0: चाहिँ अब
1: के छ त्यो डिल लिड गर्न है जस्तो
0: देजन खिन होल त एक लिडरशिप इम्प्रुभ छ छन न्यम्बो साइड साथ साथ एक टिम हो गतस न्यम्बो लस बनन गति लसपु गतुक छ तने
1: छ एक युनिटी के
0: युनिटी के तरह लसपु बन शतान जो स्पोर्ट चित्र
1: मा गतु गमा त कॉमन गोल छ फिलासक चिक सोसे लस बचिन जस्तो
0: स्पोर्ट्स एन्ड बे लिडरशिप क्वालिटी खोज दोस्रा फिल आउनु अगर दे चिस एक्सपीरियन्स छन् दोस्रा फिल आउनु खोज
1: कल्चर के वो सोसाइटी को लीड कर सकते है
0: बिल्कुल दो नयाँ चिचिक गाता नेगेटिभिटी एक्टिभिटिज छन् गाता ला सिक थगरिङ जक्छिन स्पोर्ट्स गाता स्पोर्ट गम बुझुले बचेस बसे माथि यो सुन आजकल थौ ड्रग्स जरे या बाकी जो कि नोसंदा चीजे जो हमारे सेहत के लिए सही नहीं है उन चीजों में मुब्तला हो रहा है छाना स्पोर्ट्स एक्टिविटी या फिजिकल एक्टिविटीज बचस बसे खो अधि चीज ऑब्वियसली एवॉइड छ गा चीज पिक खो अधे गलत लसन खो अधे टाइम पिका स्पोर्ट फिजिकल एक्टिविटीज से थ्रू खुआ सेहती इम्पोर्टेंस पता सुन बाकी अन गलत लस बे टाइम पिका खो फिजिकल स्किल
1: इंगेज
0: छ खो यंग लस इंगेज सुन से अधे गलत लसन
1: परफॉर्मेंस हमेशा खुद दूध है ना उसे
0: बिल्कुल
1: ये चीजें गा चीज उनकी डायरेक्टली खुद हेल्थ पे का इम्पैक्ट बताऊँ उस चीज से वो काफी डायरेक्टली खो दूर लुशा तो
0: दोनों यंग चिचिक जेंडर इक्वेलिटी जेनर इक्वेलिटी अति स्पोर्ट्स जो कुछ लोग है बाकी नहीं है सपंगा से होते हैं अति खचिक तो सोचे कि स्पोर्ट्स सिर्फ लड़के खेलेंगे लड़कियां नहीं खेलेंगे आज ये मतलब ये बात बिल्कुल भी मायने नहीं रखते राजू
1: बहुत सारे वुमेन एथलीट्स जो है जो जिन्होंने मतलब नेशनल रिप्रेजेंट और इंडिया रिप्रेजेंट
0: करगिल टेक्वांडो प्लेयर है क्या नाम है उसका शहनाज परवीन है वो एज ए फीमेल एथलीट है वो भी मतलब अपना कारगिल का तो जो लड़ाख का जोड़ पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट किया छाना आता स्पोर्ट्स से आनु बुसा मेन मा बोमो ना आता ध्यान इन्वॉल्व छाता
1: छाना कहीं ना कहीं ड्यूस बसिंग आता आ जेंडर बेस के छाने डिस्क्रिमिनेशन पूरा वर्ल्ड सोसाइटी छाने पु काफी दू उस चीज को
0: आता गॉड कम बचे गेम की रूल रेगुलेशन छना या नॉर्म्स छना का तो वदन डिसाइड छचिन कि गर्ल्स के लिए कौन सा रूल होगा बॉयज के लिए हाँ बेशक मानते हो फिजिकली थोड़ा एज कम्पेयर टू बैक मानते हो वीक जैसी कौन चीज उसके हिसाब से नॉर्म्स और रूल रेगुलेशन बनते हैं खुएं मतलब जेंडर इक्वलिटी नजरअंदाज माँ बाप खुएं संग उधर चीज पर नजर जग से खुएं फिलहाल स्पेसिफिक रूल रेगुलेशन जो से होता है जो
1: मकसद शायद अपॉर्चुनिटी बराबर थोड़ा उस पर हासिल
0: बिल्कुल
1: एक जेंडर बेसिक डिस्क्रिमिनेशन पे कि तुम लड़की हो मतलब नहीं जा सकते हैं नहीं खेल सकते अपॉर्चुनिटी दूस बस सिर्फ स्पोर्ट्स चाहिए बाकी लोग नहीं जैसे एजुकेशन आई खासकर बौद्ध हेल में हो गा लोग चाहिए जिंदगी बाकी शोभा
0: आजकल अलग अलग स्पोर्ट्स युग सो था जो जैसे कि फुटबॉल जरे टैक्वांडो जरे कराटे जरे एथलेटिक्स जरे दोनों आइस हॉकी जरे छाना जो अलग अलग स्पोर्ट्स ही देना अति जवान को नहीं होता जो छाना अति अति महकमा जरना अति अति जो भी डिस्ट्रीब्यूट सर्विस सपोर्ट ले जाना खुआ प्लेटफॉर्म था छा दोनों खुआ सपोर्ट बसे खुई दिखे आगे खिर भी
1: बहुत से लोग पहनो दिया बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज रोजगार यदि वंचित हुआ था जो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी यूथ मुल्क की बहुत सारे यूथ अरे स्पोर्ट्स न जुड़ा ही छा स्पोर्ट्स से इन्वॉल्व चाहता था जो दिव्यति फिलहाल एक पॉजिटिव स्प्रे का जो
0: बिल्कुल
1: पॉजिटिव पॉइंट चिंगता था जो प्लस पॉइंट चिंग चाहे दिया साथ ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट अरे सोशल फिजिकल पसंद है इकोनॉमिक डेवलपमेंट आते सुन चीज जरूर तो अचानक जमाना चाहे दूल इस बात में किंग आता है और स्पोर्ट्स से ना तो ये दू आता है बेकार से
0: बिल्कुल
1: आगे जाके लाइफ में खो कामयाब छा में जस्ट से क्योंकि आते और इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे करता है ना तो सुन चीज दू जस्ट बात में छाना धीरे ध्यान होता बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज तो बसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट से फिला यूथ से फिला स्पोर्ट्स से आता छो आता रोल चिंग आता धूम चाहे जो
0: डिजिटल जवान कौन यूथ कौन प्रोग्राम तरफ लखो चाहे जो
1: मकसद
0: सोसाइटी स्पोर्ट्स

0: taksasak pa intes purki khabanun lang yan inyot pin. Media mo ika nga ches, Akashwani, Kargilikana, Zirinyot.
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य,

0: साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: Rangi business un laske tang mifia lenchik akashwani rocks yanti chonglenun localin ya fayuli thokikain akashwani stanchain customer un sapille pis cups mangmu darine antes nang ya daftar ya hati kajuk senang bangyan chain akashwani ga kender chikika advertisement booking akashwani lokso channel unika advertisement tangchao samu dona ringin seyot booking befia call bazat 8700014242 ka।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर
3: 8700014242। सुनो ना।
2: हाँ।
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
3: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
4: एलुमिस बनी नूह इंसानी रुख्स बचाई हजरत अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम।

0: 얘네 급해서
1: Happy birthday, boy.
0: 네가?
2: 아, 메라 favorite color.
1: हमेशा shopping.
2: I know, ma. But खर्चा करने की भी यही उम्र है, right?
3: Saving करने की भी यही उम्र है.
4: I know, pa. Save करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा.
2: I know.

0: करता है,
1: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
4: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
5: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: पेरेंट्स में ज्यादातर इन्वॉल्व है कि वो अपने बच्चों को नजर रखें कि ड्रग की तरफ ना जाएं, इससे हमारा माशरा खराब हो जाता है।
1: नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत पुलिस ने मनुष्यात समगरों के खिलाफ अपना क्रैकडाउन जारी रखते हुए श्रीनगर में दो अलग अलग कार्रवाईयों के दौरान 4 करोड़ रुपए की अमलाक कुर्क की है। ये कार्रवाईयां पुलिस स्टेशन संगम और पुलिस स्टेशन निगिन के तहत आने वाले इलाकों में अमल में लाई गई हैं। एक और कार्रवाई के दौरान सोपोर में पुलिस ने दो बदनामी जवाना मनुष्यात समगरों की 66 लाख रूपये की अमलाक जब्त कर ली है। ये कार्रवाईयां पुलिस स्टेशन सोपोर और पुलिस स्टेशन तारजू के तहत अंजाम दी गई है। जब्तशुदा अमलाक में रिहायशी मकान, एक कनाल, 6 मरले की जर्री अराजी भी शामिल है। पुलवामा में नशा मुक्त अभियान के तहत तालीमी इदारों के नजदीक पुलिस की मुश्तरक बेदारी मुहिम मुनाकिद हुई, जिसमें महकमे माल के अहलकारों ने भी शिरकत की। मुहिम के दौरान हायर सेकेंडरी स्कूल रहमो के नजदीक मौजूद दुकानों की तलाशी ली गई और कई दुकानदारों से सिगरेट रखने की पादाश में जुर्माना वसूल किया गया। अनंतनाग में पुलिस ने एक मतलू मनुष्यात फरोश को NDPS के तहत गिरफ्तार कर लिया। अवंतीपोरा में पुलिस ने एक मुश्तबा मनुष्यात फरोश को पकड़ने के लिए छापा डाला, जिस दौरान कवानी में तलाशी कार्रवाई की गई। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि मनुष्यात के कारोबार और इसमें मुलविस अफराद को कानून के शिकंजे में लाने के लिए तआवुन दें। अवंतीपोरा में जम्मू कश्मीर पुलिस के एहतमाम से जिला सतह की दो रोजा कॉन्फ्रेंस आज से शुरू हुई, जिसमें DGP और IGP 2025-26 कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात को अमलाने पर तबादले ख्याल हुआ। SSP अवंतीपोरा ने कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया और इसमें जिले के लगभग सभी SDPOs, DSP, SHO और SOG और पुलिस चौकियों के इंचार्जों ने शिरकत की। मुहर्रम हराम इंतजामात का जायजा लेने की गर्ज से ज़रात के वजीर जावेद अहमद डार ने आज सुंबल, बांडीपोरा और बडगाम में अलग अलग मीटिंगों की सदारत की और मुहर्रम के अय्याम के दौरान अजादारों को तमाम जरूरी सहूलियात दस्तियाब रखने के लिए इकदाम करने की ताकीद की। अब रेल से मुतालिक ये खबर। शुमाली रेलवे के जम्मू डिवीजन ने हंगामी सूरतहाल से निमटने और मुसाफिरों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए एक खसूसी रहनुमा किताबचा जारी किया है। इसका इजरा डिवीजनल रेलवे मैनेजर विवेक कुमार ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे मुसाफिरों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए सभी दरकार इकदाम कर रहा है। जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में आज महकमे सनअत हिरफत की जानिब से यूटी सतह का सनअती राहदारी और प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर का दाखिली मुशावरती वर्कशॉप मुनाकिद हुआ, जिसमें ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के लिए रियासती सतह की तैयारियों का जायजा लिया गया। यह वर्कशॉप मरकजी सरकार की तरफ से शुरू की गई एक मुनज्जम मुशावरती अमल के हिस्से के तौर पर मुनाकिद किया गया। ट्रैफिक पुलिस दो पहिए चलाने वालों की तरफ से हो रही खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। SSP ट्रैफिक इजाज अहमद भट्ट ने कहा है कि टू व्हीलर पर दो ही सवारियां सफर कर सकती हैं और दोनों के लिए हेलमेट पहनना लाजमी है। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा,
2: मोटरसाइकिल्स जो हैं उसमें दो ही लोग राइड कर सकते हैं, देयर इज नो प्रोविजन फॉर 3। पिलियन एक हो सकता है और उसको भी हेलमेट होना चाहिए। उसमें एज पर लॉ जो है विदाउट हेलमेट उसको चालान दिया जाता है, दैट अमाउंट अबाउट 1000 रुपीज चालान, और अगर वो कंपाउंड करता है तो 500 ऑन स्पॉट वो कर सकता है एंड ही इज चालान बट नोबडी इज स्पेयर्ड।
1: राज्यसभा मेंबर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद रमजान ने कहा कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला की क्यादत में नेशनल कॉन्फ्रेंस की मौजूदा सरकार अवामी फलाह बहबूद, राहत रसानी और समाजी इंसाफ के वादों को अमली जामा पहनाने के लिए महदूद इख्तियार होने के बावजूद संजीदगी और खुलूस के साथ काम कर रही है और सरकार ने मुख्तसर अरसे में कई अवाम दोस्त इकदाम किए जिनसे लोगों को बड़ा फायदा पहुंचा है। इस बीच पार्टी सदर डॉ फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पार्टी के लीडर और साबिक वजीर मरहूम ख्वाजा सफदर बेग की अहलिया की रहलत पर रंजो गम का इजहार करते हुए सोगवार कुंबे से ताजियत की है। श्रीनगर में आज जनता दल यूनाइटेड की एक मीटिंग पार्टी सदर दफ्तर पर मुनाकिद हुई, जिसकी सदारत पार्टी के सदर GM शाहीन ने की। मीटिंग के दौरान पार्टी को जम्मू कश्मीर में बुनियादी सतह पर मजबूत करने की जरूरत उजागर की गई। बुजुर्गों में पानी की कमी उनके लिए कई तरह के मसाइल पैदा कर सकती है। डिहाइड्रेशन के अलावा इसे क्या क्या सेहत से जुड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं, मारूफ मौलिज और बुजुर्गों के अमराज के माहिर डॉक्टर जुबैर सलीम ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
3: गर्मियों में बुजुर्गों का पानी कम पीना सिर्फ डिहाइड्रेशन तक महदूद नहीं रहता, इससे पेशाब के इन्फेक्शन, कब्ज, ब्लड प्रेशर में वेरिएशन, गुर्दों की खराबी और हत्ता के जहनी उलझन या कंफ्यूजन भी पैदा हो सकता है। कुछ बुजुर्गों में खून गाढ़ा होने की वजह से ब्लड क्लॉट्स का खतरा भी बढ़ जाता है। बुजुर्गों को प्यास कम महसूस हो सकती है, इसलिए उन्हें प्यास का इंतजार किए बगैर दिन भर 4 बजे तक मुनासिब मकदार में पानी और सेहतमंद मशरूबात पीने चाहिए।
1: श्री माता वैष्णो देवी नारायण सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सीनियर ज्वाइंट रिप्लेसमेंट के सर्जन डॉक्टर विकास पधानिया जम्मू में LG मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। डॉक्टर मौसूफ ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को जानकारी देते हुए कहा कि अस्पताल में आयुष्मान भारत

अभी आप मुझे अच्छे लगने लगे। फिल्म में आपने उदित नारायण और पेमिला जैन को सुना। नगमे निगार थे देव कोहली और मौसीकार थे राजेश रोशन। लीजिए प्रोग्राम का अगला गीत सुनते हैं, बलमा फिल्म से, जिसे गाया है आशा भोसले और कुमार सानू ने। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है नदीम श्रवण ने।

0: अभी दीवाना फिल्म में आपने कुमार सानू और अलका याग्निक को सुना। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा था नदीम श्रवण ने। लीजिए प्रोग्राम का अगला गीत सुनते हैं धड़कन फिल्म से, जिसे गाया है उदित नारायण और साथियों ने। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है नदीम श्रवण ने।
1: अंजलि हमारी तरफ देखो, पति पत्नी ना सही, हम दोस्त बन के तो रह सकते हैं, और दोस्ती का पहला असूल ये होता है बराबरी का हक, और हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो आपकी मर्जी के खिलाफ हो, और आप भी ऐसा कोई काम नहीं करना जिसे हमें दुख पहुंचे।

अभी आप धड़कन फिल्म में आपने उदित नारायण और साथियों को सुना। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा था नदीम श्रवण ने। दोस्तों, इसी नगमे के साथ ही आज का प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।

मीडियम पर हम आकाशवाणी करगिल से बोल रहे हैं। सामिन, अब हम आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में खबरें रिली करेंगे। रिली का इंतजार कीजिए।

समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। भारत ने इसराइल और ईरान के बीच ताजा हमलों के बाद तनाव को तत्काल कम करने को कहा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस

0: अधिकारियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट।
1: इस समारोह में राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान उनके असाधारण साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में विद्रोहियों के एक बड़े हमले को नाकाम करने में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को उनके अदम्य साहस के कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया था। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना अब पूरे देश में लागू हो गई है। योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
2: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ होगा, भले ही वे राज्य के बाहर रहते हों।
3: हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया। 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतारना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के हृतिव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि हृतिव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आज एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से काशी तीर्थ यात्रा के लिए जा रही एक निजी बस बिहार में एक लॉरी से टकरा गई। इस दुर्घटना में 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मृतक तीर्थयात्रियों के परिवारों को 5,000,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को 2,00,000 रुपए और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 1,00,000 रुपए देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ के संशोधित नियामक ढांचे के अंतर्गत भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद शहद, अंडे और जल जनित खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के बाजार उपलब्ध रहेगा। कीटनाशकों से संबंधित

0: चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए नए नियमों के बाद यूरोपीय संघ ने भारत को इन उत्पादों के निर्यात के लिए पात्र अधिकृत देशों की सूची में शामिल कर लिया है। इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होगी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा, देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर में जहाज एमटी मैरीवैक्स में आग की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय कर्मचारी सुरक्षित हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए पोर्टल भव्य का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा।
1: टू डेवलप द इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम,
2: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
1: R&D and innovation oriented businesses.
0: इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के प्रति विश्वसनीयता कम हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। ASCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या ASCAT.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों की।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
5: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए, जिसमें अवशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
4: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधान

0: नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
1: हमने जो पौधा लगाया उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं जो

0: कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली में स्पेक्ट्रम नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 9 दशकों की निरंतर सेवा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
2: आज से 90 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होने के बाद से हर दिन हर पल आकाशवाणी श्रोताओं की और देश की धड़कन बन के रहा है। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रही, पहले मीडियम वेव, उसके आगे शॉर्ट वेव, फिर FM, अब डिजिटल स्ट्रीमिंग। हर माध्यम से देश के कोने कोने में बसे हुए लोगों को उनकी आवाज में समाचार, सूचनाएं और मनोरंजन आकाशवाणी देती रही।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग, रोक पर टिकाऊ खेती की और एक महत्वपूर्ण पहल परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: marking the beginning of a remarkable journey in broadcasting, information, education and culture. Post-independence, the network expanded rapidly and officially adopted the name Akashvani in 1956. To mark the occasion, Akashvani organized a cultural program named Spectrum at Akashvani's Rang Bhavan in New Delhi today. Talking to Akashvani News, Prasar Bharati Chairman Prasoon Joshi said, Akashvani has served as the backbone of the society for generations.
1: आज से 90 साल पहले
2: सिंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो 90 ईयर्स अगो आकाशवाणी हैज रिमेन्ड द हार्ट बीट ऑफ इट्स लिसनर एंड ऑफ द नेशन एवरी डे एंड एवरी मोमेंट दो एवरी मीडियम आकाशवाणी हैज कंटिन्यूड टू प्रोवाइड न्यूज इन्फॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट इन द वॉइसेज ऑफ पीपल लिविंग इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री
3: समाचार सूचनाएं और मनोरंजन आकाशवाणी देती रही.
0: India recorded the biggest ever victory in Test cricket, defeating Afghanistan by an innings and 300 runs on the third day of the one-off test in New Chandigarh today. The win surpassed India's previous record Test victory by an innings and 272 runs. It also displayed India's dominant bowling performance that saw them take 15 Afghanistan wickets on the third day. India ended their campaign at the inaugural World Yogasan Championships with 114 medals, including 102 gold today. Japan came second with 11 medals, including 3 golds, while Argentina took third, led by Nabila Barraza's 2 golds and 3 silvers. Benchmark domestic equity indices ended around 1% lower today amid weak global cues. Sensex shed 719 points to close at 73,524. NSE Nifty slipped 244 points to settle at 23,123. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu presents gallantry awards to armed forces and police personnel at defense investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan. Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana achieves nationwide coverage with West Bengal joining the scheme. A major fire at Vishakhapatnam steel plant in Andhra Pradesh claims 8 lives. India secures continued market access to export aquaculture products, honey and eggs, to EU beyond September this year. New Delhi calls for immediate de-escalation of tensions as Israel and Iran exchange fresh strikes. And India records biggest ever victory at Test cricket, defeating Afghanistan by an innings and 300 runs in New Chandigarh. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on Air app. That's all in the news at 9. Good night.
4: आदाब, ये आकाशवाणी है. जमीर रजवी से खबरें सुनिए. सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां. सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दिफाई एजाजात अता किए जाने की तकरीब के दौरान मुसल्ला अफवाज और पुलिस एहलकारों को बहादुरी के अवार्ड्स अता किए. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अब पूरे मुल्क में नाफिज हो गई है. मगरबी बंगाल में भी इस स्कीम का निफाज हो गया है. आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट में आग लगने के एक बड़े वाकये में 8 अफराद हलाक हो गए हैं. भारत यूरोपीय यूनियन को इस साल सितंबर के बाद तक आबी जराये से हासिल होने वाली मसनूआत शहद और अंडों की बरामद जारी रखेगा. इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए हैं. भारत ने कशीदगी को फौरी तौर पर कम करने को कहा है. और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एक इनिंग्स और 300 रन से हराकर तारीख रकम की है. अब खबरें तफसील से. सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुसल्ला अफवाज, मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेज और रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के पुलिस एहलकारों को बहादुरी के एजाजात से आज नवाजा. राष्ट्रपति भवन में आज शाम दिफाई अवार्ड अता किए जाने की तकरीब में ये एजाजात दिए गए. नायब सदर सी पी राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और मरकजी वजरा और मुसल्ला अफवाज के सीनियर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे. सदर जमहूरिया ने तकरीब के दौरान दिफाई फोर्सेज, मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेज और रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की पुलिस के एहलकारों को 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र अता किए. छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को रियासत में नक्सलिज्म के खिलाफ कार्रवाईयों के दौरान उनकी गैर मामूली बहादुरी के लिए शौर्य चक्र से नवाजा गया. अरुणाचल प्रदेश में शोरिश पसंदों के एक बड़े हमले को नाकाम बनाने में गैर मामूली

0: पर मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नाइक मीनाची सुंदरम ए को कीर्ति चक्र से नवाजा गया। उन्होंने शदीद तौर पर जख्मी होने के बावजूद जम्मू कश्मीर में एक सख्तगीर दहशतगर्द को हलाक किया था। मगरबी बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाफिज करने वाली मरकज के जनतजाम इलाकों समेत 36वीं रियासत बन गई है। ये योजना पूरे मुल्क में सभी शहरियों के लिए हिफ्जान सेहत तक मसावी रसाई के हुसूल में अहम संगे मील है। आयुष्मान भारत स्कीम अहल मुस्तफदीन को फी कुंबा 5 लाख रुपए तक की सानवी और आला दर्जे की इलाज की सहूलत फराहम करती है। स्कीम को नाफिज करने के लिए कौमी सेहत अथॉरिटी और मगरबी बंगाल की सरकार ने आज नई दिल्ली में एक मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए। मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा और मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में इस मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए गए। अपने खिताब में जनाब नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत पूरी दुनिया में सेहत के शोबे की सबसे बड़ी स्कीम है।
1: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
0: जनाब नड्डा ने टीएमसी की पिछली हुकूमत पर यह स्कीम नाफिज न करने पर नुक्ताचीनी की। वहीं जनाब शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत स्कीम मगरबी बंगाल के आवाम को फायदा पहुंचाएगी, अगरचे वो रियासत के बाहर ही रहते हों।
2: हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया, 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतरना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
0: मगरबी बंगाल में आयुष्मान भारत स्कीम के निफाज से रियासत के लाखों अहल मुस्तफदीन को फायदा पहुंचेगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट में आज लगी जबरदस्त आग में 8 मजदूरों की मौत हो गई और दीगर 6 जख्मी हो गए। जख्मी मजदूरों को इलाज के लिए करीबी अस्पतालों में दाखिल कराया गया है, जबकि जाए हादसे पर बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और आंध्र प्रदेश के वजीर आला एम चंद्रबाबू नायडू ने हादसे में हुए जानी नुकसान पर गहरे रंज व गम का इजहार किया है। वजीर आजम मोदी ने महलुकीन के लवायकीन को फीकस 2 लाख रुपए और जख्मियों को 50,000 रुपए की फौरी मदद का ऐलान किया है। वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की वजह का पता लगाने के लिए तफसीली जांच का हुक्म जारी किया है। नायब सदर सीपी राधा कृष्णन ने भी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। आकाशवाणी आज अपने कयाम के 90 साल पूरा होने का जश्न मना रहा है। साल 1936 में आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया था। ये तारीखी दिन मुल्क की सकाफत, इत्तेलात और नशरियाती तारीख में एक खुसूसी लम्हा था, जिसकी आवाज नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ती गई। आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो खिदमात को तेजी के साथ वसत दी गई और साल 1956 में उसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में इस मौके पर स्पेक्ट्रम नाम से एक सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में पंजाबी लोक गीतों और राजस्थानी लोक रक्स कलबेलिया पेश किया गया। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए प्रसार भारती के चेयरमैन प्रसून जोशी ने कहा कि आकाशवाणी ने नस्ल दर नस्ल समाज की रीढ़ की हड्डी का काम किया है। उन्होंने मजीद कहा कि आकाशवाणी ने इत्तेलात, सकाफत और तकलीक के जरिए अवाम को जोड़ने में अहम रोल अदा किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क्यादत में गुज़िश्ता 12 साल के दौरान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर भारत में एक नुमाया तब्दीली आई है। इस मुद्दत के दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों की बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए। आकाशवाणी का खबरों का शोबा अहम शोबों में गुज़िश्ता 12 साल के दौरान हुकूमत की कोशिशों पर खुसूसी फीचर लेकर आया है। आज माहौलियाती तहफ्फुज़ के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट। गुज़िश्ता 12 साल के दौरान भारत ने ठोस पॉलिसी इकदाम और मुस्तकिल निफाज के जरिए पायदार माहौलियाती तब्दीली का मुशाहिदा किया है। मुल्क में जंगलात और दरख्तों की तादाद में इजाफा हुआ है। दलदली जमीनों, मैंग्रोव्स और साहली माहौलियाती निजाम को बहाल किया गया है। नीज नमामि गंगे प्रोग्राम के जरिए दरियाओं की बहाली का अमल भी आगे बढ़ा है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने

0: प्रोग्राम की वजह से दरियाए गंगा की सफाई में नुमाया बेहतरी आई है।
1: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अवशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
0: 2015 में शुरू किया गया ग्रीन इंडिया मिशन एक अहम इकदाम है जो जंगलात और माहौलियाती निजाम की बहाली के लिए वक्फ है। 2024 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम मुहिम का आगाज किया था, जो दुनिया की सबसे बड़ी अवामी माहौलियाती तहरीक बनकर उभरी। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस मुहिम के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाने की मुहिम में हिस्सा लिया।
2: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
0: आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं माजिद अली।
3: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इम्तिहानात की कौमी एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 का फिर से इम्तिहान कराने के लिए इम्तिहान के शहरों की पर्ची जारी की है। ये इम्तिहान इस महीने की 21 तारीख को होना है। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि तलबा सरकारी वेबसाइट पर अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालने के बाद अलॉट किए गए शहरों के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
4: एजेंसी के जरिए जारी किए गए एक नोटिस के मुताबिक फिर से होने वाला यह इम्तिहान भारत के 551 शहरों और गैर ममालिक के 14 शहरों में 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और कागज के जरिए लिया जाएगा। एनटीए ने वादे किया है कि इम्तिहान के शहरों से मुतालिक जारी की गई पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है, बल्कि ये सिर्फ उम्मीदवारों को इम्तिहान के मरकज के बारे में जानकारी देने के लिए जारी की गई है। एजेंसी ने मजीद कहा है कि उम्मीदवार इम्तिहान और एडमिट कार्ड जारी करने से मुतालिक ताजा ऐलानात के लिए उसके सरकारी वेबसाइट से जानकारी लेते रहें। मेडिकल कॉलेजों में दाखिलों के लिए नीट यूजी का इम्तिहान इस साल 3 मई को हुआ था, लेकिन इसको पेपर लीक के इल्जाम के तनाजुर में एनटीए ने 12 मई को मंसूख कर दिया था। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
3: भारत ने तरमीमशुदा यूरोपीय यूनियन इंजबाती फ्रेमवर्क के तहत इस साल सितंबर के बाद भी यूरोपीय यूनियन के बाजारों में शहद और अंडों समेत आबी ज़राअत से मुतालिक अशिया की बरामदात जारी रखने में कामयाबी हासिल की है। यूरोपीय यूनियन ने नए जाब्तों के बाद भारत को इन मसनूआत को बरामद करने के अहल ममालिक की अपनी फहरिस्त में शामिल किया है। इन जाब्तों का मकसद एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से मुतालिक खदशात से निमटना है। कॉमर्स और सनअतों की वजारत ने बताया कि यूरोपीय यूनियन को दरामद करने वाले अहल ममालिक की फहरिस्त में भारत की शमूलियत यूरोपीय बाजार में भारतीय बरामदकारों की बिला रुकावट रसाई को यकीनी बनाएगी। ये पेशरफ्त माही परवरी के शोबे के लिए खास तौर पर अहमियत की हामिल है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन को बरामद की जाने वाली भारत की मछली और आबी मसनूआत का हजम फिलवक्त तकरीबन 1.59 अरब डॉलर है। INDIA इंतखाबी इत्तेहाद की आज दोपहर नई दिल्ली में मीटिंग हुई। इस मीटिंग में अपोजिशन पार्टियों के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने शिरकत की, जिनमें कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सीनियर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी सरबरा अखिलेश यादव और दीगर शामिल थे। वहीं कुछ अपोजिशन जमातों जैसे आम आदमी पार्टी और डीएमके ने खुद को इस मीटिंग से अलग रखा। बाद में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 अपोजिशन जमातों ने INDIA इत्तेहाद की मीटिंग में शिरकत की। जनाब खड़गे ने मजीद कहा कि INDIA इत्तेहाद की सभी जमातें इस बात पर मुत्तफिक हो गई हैं कि हर 2 महीने बाद इस तरह की मीटिंग होगी और अगली मीटिंग अगस्त के महीने में तेलंगाना के हैदराबाद में होगी।
5: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
3: दूसरी जानिब नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी तर्जमान संबित पात्रा ने कहा कि आवाम पहले ही अपोजिशन इत्तेहाद को गैर मौसर करार दे चुके हैं और इस तरह की मीटिंगों के जरिए अब वो दोबारा अपनी अफादियत साबित करना चाहता है।
6: पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई, ये सब नदारद थे। जब पार्लियामेंट में सत्र के दौरान बैठक बुलाई जाती है ये कोई नहीं आते हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।

0: yaris lai ju disko lechik ngati rinchan snanga ba khanu lechik akashwani
1: lido do pa yem la ponga ta pehla na ta elum sabarushi ko gazal la ba chin chin de do santil la tis ya ma ne stakhsa thal mi tis tis se ko ga pura jat ka di lagna rushin de saba las po ba na de ga de saba amal ba rushin ninga samar po khud bahut thobi nya chana me lut pe tam tam chin chu tam tam chin ati amu mani chu ta ndu lips ka sana de chu mani sta te ja ndu chu shi so de waran kharab chin nya ade me wa cha chu limited lut pa ang khuri hisab ti ta cha ga wa chir gos pa na de sab ta cha chana ko khud bahut yon chin nya de chin pe ja
0: haji sab yere de mudare es para jik elum yo cha suma ka chan in za shu Chana, Natanga, Dare, Sagat, but the Fiasna, Natanga took Sagat, but Bassani, young Quashia, she silver chair was woman. Young Dom, Mendagatungati, nurses, Ospanungati, Urbasapan, Skin, and Lukasperechik, Sua Elumbiga, Lachas, Machanakatu, Sua, she silver, Mayan Nagatunga, Amazon, Jin Picasson, Sagat, but Bacha, Olpica, Chacha, Rina Tanga, Nuducha, Dallas, and Pokonica Scalpamets, China, here the young woman as Parachi, Rumus, Maju. Elum yo chasuma khachan inzare phesesan di elum pu yoter gyapuna ngatanga sauga tsa gyad bad bachasin sau chiba so hole jak chasin sengnu ga son pu gatus pe katang chasin chat pu gat tik chung mar gochan gram pu gat tik chung mar gochasin ya chu ga thoika motu ngatang thon du ju ngatang yul la dupana ngatang rilung su yulu ne nu dupana du ne nu ngati sagyad bad bakhanu ne nu motu dal bi thikika khoi chu da nu
1: bilkul
0: menga khachi ga adite jaga dalmo re chana de chana ta de du ga to men na ga to जैसे खो खामा लुचा जाने का तो लाशी का मचा लुचा जाना नौकरी जी का मचा लुचा जाना उधर जगह छूता न देखने यहाँ जब मैं निशुक मदान ना का तो माना जिंग पुला ओल पुला छास पुला जुमा मदान मजात जाना दूस वासे नतां सहयत पिका चांसेस दोहरे उनसे सिंजो यहाँ दी सहयत पुला नतां इंसान उन्ना चोदा
1: बिल्कुल सिर रोशन जो पहला ख्वाहिश जरूरी है कि मौत ग्लास बना आता है जी फायदा से जिन रमा पहला आता है फ्याक्पो लगते हों फ्याक्पो करां वर्जी जिन रुकु सजदान सही के गतवाना मारा वर्जी जिन फर्स्ट क्लास वर्जी देख रहे हों से फ्याक्पो जिन बस यों यों से यूं पोते मौत तंस पे सब पुदु फायदा से जिन कि एक तो मौत छू थप जिन मिसाल फितोगा जम तो छू के मौसे छू छाता लिहाजा मौत तंस पा मौत छू आराम से थप जिन दूसरा स्टिंग में कम थप जिन जो है मौत छू तंस पे आ जाएगा देख रहे हों से मिसाल गाचा दरे ना प्लास्टिक ये नफो प्लास्टिक मल्चिंग बात दरे दे मल्चिंग पे आ जाएगा एक्स्ट्रा हुआ मिसकियत सुनमा उनमें सा उसको अमीर गोस्पात तना दे अच्छे दे लिक्विड फर्टिलाइजर तमत या जीव अमृत मिसाल गुराम न दे बलान शिलां पो पिशाब पो गुराम ची बेसन ची दो दो स्टेक तंस दो लिक्विड फर्टिलाइजर प्रचात दो छाना छू चा चप पतार छिंची छू गाकोई करना सबसे रहता मत पा दो दो वाजी के ची छात दरबार ए दो आमियों चीन दे बलान शिलां पना बलान पिशाब पे टीवा ए दो आमियों दो सेंग सेंग यों मना खो खाते का ना आपको प्लास्टिक पसों प्लास्टिक पिछाना दे वाजी का ए दो खोस ठुप छाना 24 घंटा लास बचीन 24 घंटा खोस लास बना नतांगा साफ कोची मसला वो मना हाल सों दे खोस खोस या नंगल लफ कोई दूसरे फॉरेस्ट्री बड़े बचीन दो बड़े बना सांग आते चीर कोची छास बस कि ऑक्सीजन चाचू की ना दो छाना खोस यिंग पुदो चीन सुनमा दो चीन या चीज नंग छाना अब अधे यंग प्रोटीन पो खोया बेसन पुतान चीन दो एक वन पो स्ट्रॉंग से चीन मिसाल आधे यंग गुराम पुतान खो कार्बोनेटेड सुचा चीन छाना दो वाजी का को ए दो वन पो हेल्दी सा चीन हेल्दी छाना खो 24 घंटा लास बची ना छाना दो मसला गता मन आराम का हल चीन गया बिल्कुल
0: छाना हाजी साहब यार दिया नो यंग स्पर्श जिक फिंजु गता ना दून मोटो पे का लंचस पे फंडोस पुने यंग पुने यंग बो मोटो का सगियत ला मोटो का छासन ला चुदा चास तांचास पुने ताल समोच चले ता यारिक ने यंग स्पर्श जिक चीजू दी मोटो की टाइम पे का न्यमा शर्शर लंग गता दी छासन ला चुदा चास बसे दी सुनमान जर ना का तो दून ला चंग फंके गता यंग से ने जुनी ता निमे गता अदर मोटो गता दून ला स्पर्श तांस यो जु दी सगियत पुला तखानु निस मन टाइम ही पाबंदी मने जा कोनो गतुस बिका गता छुता जा संगा तुस बिका लुत्ता जा संगा तुस बिका योरमा बा जा सिन दुन गमे का मना मोमेक्स आ जा पत खोम भी ठीक

0: ta normal na
1: Oh,
0: zane
1: misal
0: khana
1: khoi
0: chi
1: nga ta nga transplant be che phe du ba chin ki ko surfaces patak tang khan ba ardan la che jmen
0: acha khatun
1: chana khoi patak po thyang then ma rishin stol la then ma ko bu tyon chin bu te na 5 6 inch re ko cutting da sana sen kap so ma rishin che inch ardan la
0: bakhshis
1: de ko khoi fil la khoran ske chi
0: acha khaldum ba ju
1: da chaldum ko patak pe gana propagation ja la che chi son bu ba sen chana do asani ka ekdam dan jaina
0: पटक पुतने
1: चार तीन तब चा बुक्सु पुना आधे नियम्बो का तो मत मिसाल दरे मिसाल तीन तीन हजार ले केजी में दा बुक्सु हाँ केजी चा ना मिसाल दस केजी युल युल री हम आताप ना हाँ क्वांटल जी का ताप ना ना माना फरावन छह से सोंदे दो फिर देख का मत इस ज्यादा जोर तंग मर चुका लास बार रुचा तो
0: Yuli
1: बालसा दरखानी दे प्लान वो एक तो खो पहला साल ला छू पहला दो साल पे छूर गोशीन सुक लेकिन अति छूर गोशा में सुक दुनिया सबसे लंबा छगानी दिन नहीं सुक
0: मटा साल है मांगा था दिन सुक शीन सुक
1: 60 मीटर तक पाजा जिन सुक हाइट को
0: बालसा
1: दरखान दो ने जहाज वासी दे दिन अच्छा खो हल्का दिन सुक बिल्कुल हल्का हल्का पर खो कार्बन डाइऑक्साइड दिसे खो थेंचिन सुक ऑक्सीजन ज्यादा अंतान चिन सुक दो साल लिया ना खो छू मैंने बिल्कुल काम रोशन सुन को टेम्परेचर पा मैंने 27 टू प्लस 60 था पा को बड़ा संभा चिन सुन
0: चाना दा सो रिलुंग से यू नो दी बालसा मा
1: बालसा गता ना माता मैंने बढ़िया दे कार्बन से पा को थे चिन सुन चाना दो मति भी सबसे बेहतरीन दुख है घर में छोंग मर गोस ना दे सी बीट छों से दी के जर्मेंट बसे चाते डिपार्टमेंट निसंग
0: गा गा यू सोचे नु दी छुक से यो जर चासो या दी
1: कमरान बिल्कुल बन जा दो बन जा सना दे प्लान नुनिस कार्बन डाइऑक्साइड ता जिन छना ही जों खानला थबते प्रॉब्लम है जिन दो फ्रेंड गा तंगा दिया या ना मा जा ना गुल ना जा ना दी मिसाल क्रिसेंथेमम तोसुन जेरिनियम तोसुन जान रे नरे एलोवेरा तोसुन जेरबिरा तोसुन स्नेक प्लांट तोसुन जाना छला ऑक्सीजन
0: मेन दो मा लोसो लोसो रिग्स का
1: से
0: का से ऑक्सीजन
1: Chana mena e mendo konis hizon kanime tebete problem bachi.
0: 90
1: san la he.
0: Se
1: rimana ko carbon dioxide ko denda kon san. Yong mana kore ta de bilkul.
0: Chana yeres dian yang spara jishik man ardumuz so yu sobak toni bare nu galangat sokskur anzaret yang ate chagal du manzaret. Diu angata norbalan ifyam argal bashin zera rin yang diu di sun putap sir gyabna ya di patakun sa speller gyabna diunis angata nga di chagal dumun sa kule kheden chacha zinz dune nyambu yambu dare di tu spen angata thongan ju ju angata local product chana dare angata motpu do factory sun yang nu ngati di chagal dumun sa khere soskuri jam ju sun nu soskuri angata nga yang losu losu item angata diuni garcho so den malsari chacho chas pun nyambu bo ngati
1: ngatang yang dia yang point je tu juga. Ekto ngatang dia calon pesulut sana 50-60 rupiah per kg tak mat. Kamai bahkan launching aja 20 ton cik air kaspin. Dia sana aneka jenis 50-40,000 kamai bahas. 20 dini yang dia kiri kan. Tanah ngatang calo itu cung mat cung nang kontes ransus pesulut sekian. Dia skam juga. Skam juga sana jok. Dia kan grande rentong. तो थक सना बोतल ने ताज जो हो कम से कम दो रंग सोसोस मोटुक दे थक सरिया ना गिलास गांव डोन में चीन दांस ना तो फोन में आ रहे दांस तो